CBA instead of

אתה יכול

अच्छी तरह परवरिश किया और जकरिया को उसका मुतकब्बिल बनाया। जकरिया जब कभी इबादतगाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम, ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोली, अल्लाह के हाथ से आता है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क देता है।

مريم

qui est passé.

दोनों हालतों में लोगों से यकसा गुफ्तगू करेगा और नेकुकारों में होगा।

हो जा तो वो हो जा।

कुछ तुम खा कर आते हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो सब तुमको बता देता हूँ। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए कुदरत खुदा की निशानी है।

देखी तो कहने लगे कि कोई है जो अल्लाह

जो झूठा है उसको शिकस्त, ना जैसा ही वो बदर में अल्लाह ताला ने कहा। रसूलों के साथ अल्लाह ताला ये मामला करते हैं कि उनके आने के बाद हक बात को इस तरह से वादे कर देते हैं कि किसी के लिए शुभ तो उसके लिए अल्लाह ताला दो काम करते हैं। एक ये कि रसूल की बातें ऐसी होती हैं जो दो टूटी में वादे होती हैं, दूसरा ये कि कुछ टेंजिबल या आवाज़ के अंदर आने वाली निशानियाँ उस तरह की निशानियाँ होती हैं। बदर वाले दिन दोनों इस ऐलान के साथ मैदान में आए, आज जो सच्चा है उसके बारे में इस तरह की निशानियाँ अल्लाह ताला जाहिर करते रहते हैं जो देखने वाली होती हैं, खुद नज़र आ रही होती हैं कि अल्लाह के रसूल मसलन अल्लाह ताला के रसूल ने कहा कि उकबा यहाँ गिरेगा, शैबा यहाँ गिरेगा, फलां यहाँ गिरेगा, ये कुरैश के सरदारों के नाम हैं। तो बदर में जहाँ जहाँ आपने फरमाया था वैसे वैसे इस तरह से अल्लाह ताला वाजे करते हैं कि मेरा रसूल सच्चा है। तो फरमाया कि तुमने बदर के वाक़े को याद करो, क्या हुआ, फिर दो ग्रोह जो थे वो आमने सामने थे, एक अल्लाह की राह में लड़ रहा था और एक काफिरों का ग्रोह, और अल्लाह ने क्या किया उसको, ये 300 के 300 को खड़ा और उधर 1200 के। तो जब शुरू में जब जाते तक मालूम होगा, शुरू में ऐसा लग रहा था कि मुसलमान बहुत छोड़े ताकि कुरैश आगे बढ़े भाग ना जाए। जब कुरैश आगे आ गए तो ऐन जंग के मौके पर सहाबा झुकने लगे अपनी फौज से, यानी कुरैश को कुरैश 1200 थे तो ये 2400 नजर आए। फरमाया कि अल्लाह ताला इस तरह से कमज़ोर पड़ गया, कुरैश के ऊपर हौसले हार गए होंगे वो, इस तरह से

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

خضر

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। ए अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ऐ अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस वार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ऐ करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: के लिए आपके लिए FM 11 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक
1: आवाज की दुनिया का दोस्त मालूमातों तफरीह का साथी मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।

listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

आप सुन रहे हैं FM 101 अब बल बल्ले चाबो चाबा।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सुनते रहिए FM 101, 101, 101।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इटली के 7 मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कसीर जहती निज़ाम और बैनुल अक़वामी कानून पर अमल दरामद के बारे में पाकिस्तान के देरीना अज़्म पर जोर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रवां साल बलोचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 1188 दहशत गर्दों को हलाक किया है। ख्वातीन की T20 एशिया कप में पाकिस्तान का मुकाबला आज दुबई में भारत से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। बहरी असलाहत के बारे में वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स के तहत पाकिस्तान के बहरी शोबा तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कल यौम दिफा शोहदा मनाया जाएगा। आज दुबई में खवातीन के T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Chester.
1: So, what's cooking?

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: दाना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: This is FM 101.
1: Je tu labda va phir dan labni ruk jaye sada sakne.

की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान के

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: listening to FM 101, a Bale Bale or Shower Shower.
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: Tune in to one above.

गहराइयों में जाने दे, अब मुझ पे जो गुजर रही तुम्हें तो कोई खबर नहीं। तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं। चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

क्या बात है जी, बड़ा सोहना जिहा ट्रैक है। तुसीं मैनूं दसो कि यह ट्रैक जिहड़ा किस ट्रैक की तर्ज का है। यह तो वैसे आसान होएगा, बहुत आसान होएगा। हर कोई हर काम कर सकता है, या तुसी किसे एक परफेक्ट फील्ड वास्ते बने हुंदे हो, हर काम करना मुमकिन है, आसान है या फिर मुश्किल है, इस हवाले नाल प्रोग्राम से तफसीली गलबात रहेगी। प्रोग्राम से तुसी सारे शामिल हो रहे, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मरियम आ गई है गुलबर्ग तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। हुण मैनू लग रहा साडी आवाज़ बेहतरीन जा रही है जी। हैं जी, ठीक है जी। अली इमरान शाहबाग लाहौर तो सानू सुन दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलहमदुल्ला मैं ठीक ठाक। प्रोग्राम सुनने की गल करिए तो कुछ कमेंट्स जड़े ने साढ़े तक पहुँच रहे हैं। पहला कमेंट केड़ा है, इसनों वेखते हैं जी। जे असी यह ना दस सकीए कि सब तो पहला कमेंट केड़ा है, तो कोई नहीं, सारे कमेंट्स जड़े हैं पढ़ के जरूर जावे। ठीक है जी। कवल ना, थैंक यू सो मच, तुम साढ़े नाल मौजूद हो। नाइस रेडियो शो, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, कवल ने भी एक फोटो जी साढ़े नाल शेयर की है। कवल बिल्कुल, इसनों असी पहले अप्रूव करावे। फोटो तो बड़ी जबरदस्त है, इनू मैं अपने को महफूज भी रखा हुआ। ठीक है जी। रियाज भट्टी आ गए। रियाज भट्टी, रमजान गुजर, इकबाल मेहदी, मलिक वसीम अवान, मोहम्मद उर्सलगारी, मोहम्मद अली खास खेली, आजी जरमान, मुनवर अब्बास, अनवर भट्टी, सबनों सलाम पहुँच गया। गाना चला दो प्लीज, बिस्मिल्ला कराम। लखवारी सिंगर नदीम अब्बास की आवाज़ से सऊदी अरेबिया तो फिरोज आलम जान सानू सुनते हैं, बड़ी मेहरबानी जी। थोड़ा जहा इंतजार फरमाओ, अगर मैं भूल गई तो याद भी करवाओ। ठीक है जी। वाह वाह वाह, रियाज भट्टी थैंक यू सो मच, शाहदरा तो शामिल हो रहे हो। बहुत सारे होर कमेंट्स मैनू नज़र आ रहे हैं, हमेशा की तरह जबरदस्त खूबसूरत एंट्री है जी। वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू फिरोज आलम। कवल ने कहा कि जैनब तुहानू सुन के ना मूड चंगा हो जाता है। हैं जी, वाकई जी। चलो जी, ठीक है, मेरा हाल भी ठीक है, मैं भी ठीक हाँ, घर वाले भी ठीक ने। मोहम्मद नईम टेलर आ गए ने, म्यूजिक नु पसंद करे ने, प्रोग्राम नु पसंद करे ने, थैंक यू सो मच जी। वेलकम दी जिया यानू भी आ गया नाल। मेरा बेटा हसन भी थानू सुन रहा है, बहुत शुक्रिया जी। आर जे वसीम साहब नू भी थोड़ा सलाम पहुँच गया। वालेकुम असलम, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह जी, जिया यानू कह रहे हो मोहम्मद नईम टेलर, काफ़ी सारे कमेंट्स उसी कर लेने, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तारिक साहब साढ़े नाल मौजूद, असलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम असलम, मेरा हाल पूछ रहे हो। मैं ठीक ठाक बेहतरीन अलहमदुल्ला। रब ताला थानू सलामत रखे, तमाम खूबसूरत समाता नू सलाम। शमीम आप ही नू खसूसी सलाम पहुँच गया। वालेकुम असलम जी, थैंक यू सो वेरी मच। एफ एम मोनम लाहौर के पेज से भी तुसी आ रहे हो, कमेंट्स राही प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हो, शामिल हो रहे हो, साथ दे रहे हो, साथ निभा रहे हो। नाल नाल तुहाडे ते नाल नाल साढ़े नंबर वन आर जे नंबर वन रेडियो स्टेशन सऊदी अरेबिया तो होर कमेंट्स आ गए। रियाज भट्टी बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम सुनने की गल करिए, फातिमा आपी तुसी भी सानू सुन रहे हो बहुत ही मोहब्बत नाल ते बहुत ही चाहत नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं भी सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया जी। जिंदे वसदे रहो, आबाद रहो, तुसी हमेशा मेरा प्रोग्राम सुनते हो इसे मोहब्बत चाहत नाल जी। जिंदे वसदे रहो ते खुश रहो। प्रोग्राम च आवाज़ शामिल कर रहे हैं इबरारुल हक की, बहुत ही सोहना जहा ट्रैक है जी। मुड़ के वापस आने हैं तो गलबात का सिलसिला थोड़े सब नाल अगे तोड़ते हैं। एफ एम 101 दे लाहौर स्टूडियो तो थोड़े सब नाल मुखातिब ते मौजूद है थोड़ी अपनी आरजे ते मेज़बान जैनब अरशद। स्टे ट्यून टू 101 एफ एम रेडियो पाकिस्तान।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

This is FM 101.

जी जनाब जी आए कहने वेलकम ते खुश आमदी तुसी सुन रहे देसी बीट्स रेडियो पाकिस्तान 101 FM दे लाहौर स्टूडियो सो बहुत सारे मैसेजेस ते कमेंट्स सब बहुत शुक्रिया इनोसेंट परी ते गुड़िया थोड़ी पार्टिसिपेशन दा बहुत शुक्रिया तुसी कह रहे हो कि जैनब आपी हर कोई हर काम च मास्टर नहीं हो सकदा क्या जांदा है कि जिदा काम है ओनू ही जनाब सजदा है ते जचदा है ते थोड़ी गल नाल मैं बिल्कुल इतफाक करी हां नहीं वैसे हले मैं अपनी राय नहीं दित्ती सिर्फ और सिर्फ थोड़े कोलों थोड़ी राय जिहड़ी उहदा इजहार मंगिया है बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम के हवाले नाल पसंदीदगी दे इजहार दा कुछ लोगों का यही कहना हुंदा है कि हर चीज़ हर कोई परफेक्ट कर सकता है लेकिन थानू की लगता है जी ऐसा मुमकिन है या नहीं है हर बंदा हर काम कर सकता है या नहीं कर सकता इस हवाले नाल मिली जुली गलबात जी जरूर रहेगी प्रोग्राम अच्छा है चंगा है टॉपिक अच्छा है पिक्चर अच्छी है ये सब तो अड तुसी अगर टॉपिक के हवाले नाल जनाब सरनामे के हवाले नाल अगर क्या भी कुछ करो तो सानू वो भी चंगा लगता है परवीन साहबा साढ़े नाल मौजूद ने परवीन साहबा ने कहा कि सब जड़े ने ना सब काम नहीं कर सकते जिस तरह कि तुसी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो तो अच्छा जी तुसी अच्छा ही करते हो वसीम अहमद साहब नू खास तौर पर सलाम दे रहे हो नाल कह रहे हो कि उन्होंने शोज़ भी बड़े अच्छे होंगे ने उम्मीद करेंगे कि बल्कि इंतजार करेंगे कि थोड़े कंबाइंड शोज़ कदों होंगे जी इंशाल्लाह ताला होंगे नहीं तो एक अद्धा दिन असं जरूर आवेंगे उन्होंने ज्वाइन करेंगे ठीक है जी फिलहाल वेला हो चलिया छोटे जे टाइम च एकदम मुड़ के वापस आने हैं

जी जनाब जी एन वेलकम ते खुश आमदीद। फातिमा बाजी बहुत शुक्रिया जी मजीद मैसेजेस दा ते बहुत सारिया दुआवां दा। कुछ गीत जड़े ने ना वो बस चला ही देने चाहिए ने। जरूरी नहीं है कि कोई खास मकसद ही होए। ते अलहमदुलिल्लाह तुसी बड़े ही अपने आप नूं खुशकिस्मत महसूस करदे हो कि जिहड़े तुहाडे शरीक भी होण, शरीक रिश्तेदार भी होण या तुहाडे कोल होण जनाब, ते ओह तुहाडे नाल मुखलिस होण। इह बड़ी मैं समझदी हां कि बहुत वड्डी इक ब्लैसिंग हुंदी है। बहुत सारियां गल्लां बात अज दे प्रोग्राम दा हिस्सा बन रही ने। कुछ कमेंट्स मैनूं फिर तो नज़र आ रहे हैं, चार चार साथी ते थोड़े कुछ मैसेजेस भी नज़र आ रहे ने। बहुत शुक्रिया जी। मरियम गुलबर्ग तो सानू सुनदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम ने कहा कि ज़ैनब आपी कॉल जड़ियां ने, कॉल्स जड़ियां ने ज़्यादा तो ज़्यादा लिया करो। ठीक हो गया जी। प्रोग्राम च जिहड़ी है ना खूबसूरती लगती है, प्रोग्राम होर भी चंगा हो जाता है अगर तुसी कॉल्स लैंदे होते। ठीक हो गया, थोड़ी गल नूं असी नोट कर लिया। नाल कह रहे हो कि यह वाला ट्रैक जिहड़ा है ना मैनू बड़ा पसंद है, फिर तो थानू साडा बोलना जिहड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होएगा।

जी जनाब जी, आनू कहने वेलकम ते खुश आमदी। देसी बीट प्रोग्राम दा नाम है जी 3 बजे ताईं थोड़ा साडा साथ है। इस प्रोग्राम च रेडियो पाकिस्तान 101 FM दे लाहौर स्टेशन तो हर बंदा हर काम कर सकदा है या नहीं जनाब। रब ताला ने हर किसी नू हर काम वास्ते नहीं बनाया। चंद एक मुंतखब लोग हुंदे ने जिहड़े अपनी फील्ड च हुंदे ने ते कमाल करदे ने, कमाल दा काम करदे ने। ते इहदे नाल प्रोग्राम सुनन दी गल करिए ते तुसीं सारे वी कमाल करदे हो। इस साजिदा जहूर साहिबा साडे नाल मौजूद ने, साडी अपनी आरजे। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगनू जूनियर सानू कह रहे हैं अलहमदुल्ला जी, सुनता तो रहना वा पर शिरकत थोड़ी जी औखी हो जाती है। क्यों जी, कमेंट करना तो बड़ा सुख है जी, नाल पुरानी आई डी जी भी बंद हो गई है, ठीक हो गया। ओए होए होए, अच्छा ऐ तो वैसे बड़े दुख लगता है कि जिमें थोड़े जिहड़े ऐप्स ते तुसी अगर मुख्तलिफ आई डीज़ जिहड़े बनाए हुंदे ने अगर वो ना एक्टिवेट होन ना चलन तो फिर बड़ा दुख लगता। उज़मा एजाज़ सानू सुन दिया, सलाम अलैकुम। वालेकुम असलाम। रब ताला थानू आबाद रखे। वेरी नाइस शो, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, नाल तुसी बड़ी एक वधिया गल कीती है। तुसी कह रहे हो कि कुछ लोग इन्ने चंगे हुंदे ने कि उन्हां कोलों दूर रहना ही चंगा हुंदा। लोकी कम होण पर अपने होण। आ हा हा, इहो पछाण करना तो बड़ा मुश्किल हुंदा उज़मा साहिबा। अगर तुसी पहली बारी आए हो तो थानू जी आयां नू कहने आ, थोड़ा मैसेज जिहड़ा ना हमेशा मैनू याद रहेगा। एक बारी फिर इस नू पढ़दे आ ताकि भुल्ले ना। कुछ लोग इन्ने चंगे होंगे ने कि उन्होंने को दूर रहना चंगा होंगे। चलो जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शफकत अली म्यो, शौकत अली म्यो नंबरदार, मुश्ताक खान म्यो नंबरदार, मास्टर सलीम जावेद म्यो नंबरदार, पीर महल चक नंबर 755 गाव बेतों कमाल प्रोग्राम रेडियो FM 101 की प्यारी टीम ने सलाम पेश कर दें। वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच जी। राणा साकिब सानू सुन दे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी कह रहे हो कि ज़ैनब हर कोई हर काम नहीं कर सकता। मैं अगर बैंकिंग दी फील्ड नाल वाबस्ता वहाँ ते जनाब जरूरी नहीं है कि मैं थोड़े वर्गा एक बेहतरीन प्रोग्राम पेश कर सकां। ठीक हो गया जी, थोड़ी गल नूं असीं नोट कर लिया। अच्छा वैसे इस गल नूं मैं भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों नाल अक्सर जनाब मुलाकात का इतफाक भी हुंदा है। तो अक्सर TV ते काम करन वाले जिहड़े ने ना वो कहिंदे ने कि जी असीं रेडियो प्रोग्राम करांगे, ते जिस वेले असीं कहने कि चलो थोड़ा जिहा टाइम लै लो अपने कोई रिकॉर्डेड क्लिप जिहड़ा साडे नाल शेयर कर दो, तो फिर वो सोचिंग पै जांदे ने, कहिंदे ने कि हैं अच्छा फिर नहीं जी साडा ऑडिशन करा दो, असीं सामने सही बोल लांगे। तो मतलब इस तरह का जरूर एक सिचुएशन जिहड़ी वो रहिंदी है। मैं समझदी हाँ कि रेडियो ते बोलण वाला इंसान जिहड़ा ना वो जिंदगी च किसी भी शोबे च नाकाम नहीं हुंदा। ये वैसे काफ़ी हद तक गल जी दुरुस्त है। टैलीविजन पर काम करन वाले काफ़ी हद तक जनाब स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं, हेल्प हो जाती है, काफ़ी सारिया चीज़ा जीडिया नाल हुंदिया ने। फिर उस तो इलावा एडिटिंग जी है उद्दे चे भी तुसी अगर बहुत कुछ जेड़ा शामिल नहीं करवाना चाहते हो प्रोग्राम से उसनों एडिट करके तो डिलीट कर दिता जाता है। ये नाल अगर रेडियो की गल करिए तो रेडियो सानू बड़ा कुछ सिखाता है। ये जो कॉन्फिडेंस नाल असी बोलीदा है माइक ते बोलीदा है, तो बहुत सारे मुख्तलिफ हवालिया नाल गलबात करीदी है, रेडियो की ही मेहरबानी है। लेकिन फिर वही गल है ना कि हर बंदा हर फील्ड वास्ते नहीं हुंदा, जिदा कि राणा साकिब ने किया है। बाकी प्रोग्राम ने तुसी पसंद करे। मोहम्मद अवैस नू सलाम, नैना नू सलाम, प्रवीण साहिबा नू सलाम, अमाराबाद जी नू सलाम, वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच जी। 1:53 हो गए ने। एक सोहना जिहा ट्रैक है ज़ीशान रोकड़ी दी आवाज़ जो उसनू भी शामिल करांगे थोड़ी देर तो बाद। मोहम्मद तारिक साहब सानू सुनदे ने, लाहौर तो शामिल हो रहे हो, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनबा जी। वालेकुम असलाम। सानू जी आए नू कह रहे हो, नाल तुसी कह रहे हो कि ऐसा मुमकिन ही क्यों कि असी बाज लोकां नू हारफण मौला कहने आ। ऐसा मुमकिन है कि असी बाज लोकां नू हरफन मौला कहने आ, जिहड़े हर काम कर लैंदे ने उन्हां नू हर फन मौला ने दिता हुंदा है। सलाम टू आल, सलामत रहो ते खुश वसो। ठीक हो गया जी। हाँ वैसे यह भी गल हुण सोचण वाली है, तारिक भाई ने सानू सोची पाता है। हमेशा ही मैं गल करदी हाँ कि जिस वेले तारिक भाई की गल आंदी है या कमेंट आंदा ना तो प्रोग्राम च असी एक नवें रुख वल चले जाईदा है, प्रोग्राम जिहड़ा एक नवीं सिमत वल चले जांदा है। इसे तरह जुगनू जूनियर आ गए जी, थैंक यू सो मच। कुछ अशार जिहड़े आ तुसी पेश कर रहे हो, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम च शामिल होने का।

0: This is FM 101.
1: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: क्या बात है, क्या बात है, हो गई ना गलती, कोई गल नहीं। कुछ गलतियाँ ऐसा होंगे ने कि चिड़िया बड़िया क्यूट लगदिया ने। बेबे जान की सानू कॉल आई है जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया मौजूदगी के एहसास का, तो ये तमाम लिसनर्स का शुक्रिया अदा कर, थैंक यू सो मच जी, जिंदे बस्ते रहो, आबाद रहो। बर्थडे की गल कर रहे थे असी जन्म दिहाड़ की, तो जन्म दिहाड़ जिस वेले तुहाडे अपने जिहड़े ने ना तुहानू याद रखते ने, तुहाडी सालगिरह नू सैलीब्रेट करते हैं, तो जिस वेले उन्हां दा जन्म दिहाड़ हुंदा भावें वह जिन्ना मर्जी भी मना करन ना, सैलीब्रेट जरूर करया करो, थोड़ा बहुत उन्हां वास्ते कुछ स्पैशल कुछ खास करया करो, ताकि उन्हां नू एहसास होए कि जनाब ये साडे स्पैशल दिन ते साडी खुशी च हमेशा जनाब याद ने, याद रख रहे ने सानू, ते फिर शरीक रखणे ने अपनी खुशी च। अच्छा हमारा बेग कोई गल नहीं, कुछ गलतियाँ बड़ियाँ चंगियाँ होंदियाँ ने, इस तरह ही जनाब तुसी भी समझ गए, असी भी समझ गए। ऐसा करते हैं लाइव कॉल तो वेखते हैं अगले जी कौन ने की कहना चाहते ने। अच्छा कवल लाल ने सातों सवाल पूछा है कि जैनब एक गल तो दसो कि तुसी टॉपिक कितों लभ के लियांदे हो, बस फिर वेख लो जी, जिस वेले क्रिएटिव होने की गल करिए तो हर आर्जे जिहड़ा ना, हर आर्टिस्ट जिहड़ा अपने ताई बड़ा क्रिएटिव हुंदा है जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: आहा
1: उस्ताद जी, समान तो बच जांदे जिन्ने वाले जमीन ते रिज़क दियां ढेरियां ने,
0: वाह
1: डुबदे नहीं उतरदे रहंदे रब सच्चा, जिन्ना ते खास रहमतां तेरियां ने,
0: ने बेशक
1: रब सच्चा दा नाम है कि सैदपुर साहिब मुल्तान रोड लाहौर तो आ गया उस्ताद जीरा साहब दा वीरा अपने विचार सांझे करन लई। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, आए नु कहने आ प्रोग्राम च, ठीक हो तुसी
1: जी? बड़ी मेहरबानी ते बहुत शुक्रिया जनाब जी, असि बिल्कुल ठीक ठाक, टिप टाप एकदम मजे दे विच,
0: जबरदस्त जी, रब ताला इंजी रखे, ठीक ठाक रखे। उस्ताद जीरा हर कोई हर काम कर सकदा है कि नहीं, एवें गल्लां ही बड़ियां ने?
1: नहीं मेरी गल सुनो ना जनाब जी, एक मिसाल भी ते बनी सी, बंदे नु हर फन मौला होना चाहिदा,
0: होना चाहिदा, लेकिन मुश्किल
1: है, एक काम बंदे कोल ना होवे दूसरा काम कर ले, ओ ना होवे तीसरा कर ले, ओ ना होवे चौथा कर ले, ए मिसाल ते बड़ी सही है।
0: सही है,
1: सब
0: कुछ हो गया। आरजे भी कंफ्यूज हो गई, सही है?
1: नहीं नहीं आरजे नहीं कंफ्यूज होंदे, असी ते आरजे दे कोलों सीखने आ, देखो ना जी असी जेड़े कॉलर आ जी, असी आ आरजे दी ऑक्सीजन।
0: हां हां जरूरी है जी, बिल्कुल ऐसा ही,
1: हां बिल्कुल, ते असी सुनने वाले तुहाडे कोलों सीखने आ, ते कुछ साडे कोलों इहो जिहियां गल्लां होंदियां जिहड़ियां कदी नहीं असी याद कीतियां तो अचानक मुंह च निकल जांदियां, ओह साडे भी कम आ जांदियां।
0: बहुत शुक्रिया उस्ताद जीरा, बहुत शुक्रिया, इन्नी इज्जत तुसी देंदे हो, हमेशा ही रिस्पेक्ट देंदे हो, जिंदे वास्ते रहो। होर कुछ कहना जी?
1: जनाब बाजी, जनाब बाजी अज 18 साल हो गए,
0: 14 अगस्त नु 18 साल हो गए सी।
1: हां जी चलो असी ते महीना इहो ही चल रहा ना जी।
0: हां जी जी जी जी जी जी तकरीबन ठीक है,
1: जो मर्जी गाना चला देना माई सानू भुलना जावी,
0: हूं मैं कड्या वादा करके मुकरे जेड़ा चल जाएगा,
1: चलो इन्हां दे नामे ला दियो जी वादा करके मुकरे जेड़ा,
0: जदों
1: नहीं ओह वैरी है मैं नहीं कहंदी ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ,
1: ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ,
0: ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਆਮੀਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ,
1: ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ
0: ਬੇਲੀ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।

0: राणा से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में सैफ गेम्स की कामयाब मेजबानी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। खजाने के वज़ीर मुमलिकत ने टैक्स वसूली और माशी तरक्की में निजी शोबे के अहम किरदार को उजागर किया है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन मुल्की कार्गो के नकलो हमल में कौमी जहाज रानी के इस्तेमाल को फरोख देने के लिए अपने बेड़े को 54 बहरी जहाजों तक वसत दे रही है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को एशिया पैसिफिक मीडिया पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के 16 बानी अरकान में शामिल किया गया है। टेलीविजन और फिल्म के मारूफ अदाकार आबिद अली की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। और आज दुबई में खवातीन के T20 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सैफ गेम्स की तैयारियों के हवाले से रहबर कमेटी का इजलास नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। ये गेम्स जनूबी एशियाई ओलंपिक कमेटी के तआवुन से आइंदा साल 4 से 11 अप्रैल तक होंगे। इजलास में कौमी राबताकार की तकर्री और रहबर इंतजामी और सूबाई कमेटियों की तश्कील की भी मंजूरी दी गई। सैफ गेम्स में मजमूई तौर पर 28 खेलों के मुकाबले होंगे जिनमें 6,000 से ज्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स की शिरकत मुतवक्के है। मुकाबले इस्लामाबाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होंगे। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम मुतालिका हुकाम को करीबी राबता बरकरार रखने, मुकाबलों के मकामात की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने और कामयाब मेजबानी का आला तरीन मयार बरकरार रखने की हिदायत की।
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: दिस इज FM 101।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: दिस इज FM 101।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: दिस इज FM 101।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: This is FM 101।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: This is FM 101। This is FM 101।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: आइए सामेईन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
5: आज हम बयान करेंगे, पारा है दूसरा और सूरह मुबारक है बकरा और आयत नंबर है 151 एंड 152। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फीकुम रसूल मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून फ़ज़कुरूनी अज़्कुरुकुम बशकुरूनी वला तकफ़ुरून। सदक अल्लाहु अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कमा अरसलना, कमा मैंने जैसा के, अरसलना हमने भेजा, फ़ीकुम तुम में, रसूलम एक रसूल, मिनकुम तुम ही में से, यतलू वो पढ़ते हैं, अलैकुम तुम पर, आयातिना अपनी आयतें, व युज़क्कीकुम और तुम्हें पाक करते हैं, व युअल्लिमुकुमुल किताबा और वो तुम्हें किताब का इल्म सिखाते हैं कुरान मजीद का, वल हिकमता और वो तुम्हें हिकमत सिखाते हैं, व युअल्लिमुकुम और वो तुम्हें क्या सिखाते हैं, मालम तकूनु तालमून जो तुम नहीं जानते, वो चीज़ें तुम्हें सिखाते हैं। वो हैं खातमुन्नबीन इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा अरसलना यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने माबूस फरमाया और ये भी बताया कि तुम ही में से माबूस, जिन्नों में से नहीं, फरिश्तों में से नहीं, इंसानों में से ही माबूस फरमाया, ताकि कल को ये ना कहो कि वो तो फरिश्ते थे तो हम उन जैसा नहीं कर सकते। नहीं, हुक्म हुआ उनकी इत्तबा करें, जैसे करके दिखाया इस तरह से हम उनकी इत्तबा करेंगे तो हम उनके उम्मती कहलाएँगे। फरमाया अलैकुम या आयातिना और तुम पर आयातें अपनी पढ़ते हैं, अपनी तमाम जो तलावत फरमाते हैं आयतें जो आयात हैं कुरान मजीद की, वह युज़क्कीकुम तो ये पाक कर देती हैं तुम्हें, इससे हमें पाक कर दिया गया। जो जो हम इससे पाक होना चाहता है कुरान मजीद पढ़े तो पाक हो जाएगा। वह युअल्लिमुल किताबा और इसमें से किताब का इल्म भी है कुरान मजीद का, जैसे आसिफ बरखिया के पास उस वक्त की किताब का इल्म था, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इरशाद फरमाया कौन लाएगा तख़्त बल्कि इसका, तो उन्होंने कहा आप पलक झपकें तो अभी तख्त आ जाता है,

0: This is FM 101.
1: सोना लाया है NPS, तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: This is FM 101.
2: सुनते रहिए FM 101.

मुझे भूल न जाना, मुझे याद न आना, मुझे

0: कार्य के अमल पर पेशअप का जायजा लिया। शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कल योम दिफा और शहदा मनाया जाएगा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को एशिया पैसिफिक मीडिया पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के 16 बानी अरकान में शामिल कर लिया गया है। आज दुबई में खवातीन के T20 एशिया कप में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा।
1: This is FM 101.
2: Hey, we'll be back after-

ये दुनिया झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा नाम

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: हेलो, हाँ संग, वेयर आर यू? कितनी देर से?
2: I'm on the way यार, बस आधा घंटा दे।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान की

0: This is FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: देखे तो जो इधर

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: क्या कह रही थी तुम, एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: आहा नो मान खाले समा कुम लारे

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी।
0: 101
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है fake, उनके बारे में मेरा है take। I don't care what you think, what you

닥사 그냥 얼추 퍼 그냥 마 닥사 그냥 얼추 퍼 그냥 마 닥사 그냥 얼추 퍼 그냥 마 닥사 그냥

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

कैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बरामदी तरक्याती फंड्स के पास मौजूद फंड्स ताजिर बरादरी की सहूलत और माशी तरक्की के फरोग के लिए बरवे कार लाए जा रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में एक इजलास के दौरान तवानाई के शोबे में इस्लाहात और निजकारी के अमल पर पेशरफ्त का जायजा लिया। शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कल यौम दिफाउ शोहदा मनाया जाएगा। भारतीय फौज ने गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में तलाशी की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड और एक्ज़िम बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिलखसूस छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए बरामदी इंश्योरेंस कवरेज फराहम करने के इकदाम का खैर मकदम किया है। वो आज लाहौर में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के हवाले से एक इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 अरब रुपए का रिस्क पोल कायम करने से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए बरामदी कर्जों की इंश्योरेंस कवरेज में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने इस्लाहात मुतारफ कराने पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड को सराहा। उन्होंने कहा कि तंजीम नौ के बाद एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड की क्यादत निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन के सपुर्द कर दी गई है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1.
2: And then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बरामदी तरक्याती फंड्स के पास मौजूद फंड्स ताजिर बरादरी की सहूलत और माशी तरक्की के फरोग के लिए बरवेकार लाए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने इस अज़्म का इयादा किया है कि बलूचिस्तान के आवाम का अमन, खुशहाली और फलाह बहबूद रियासती कोशिशों का मरकज है। शुहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कल यौम दिफाउ शुहदा मनाया जाएगा। आज रात दुबई में खवातीन की T20 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: जी आप साथ हैं?
2: जी जी सर।
1: हाँ जी बताइए।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या,

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

और इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है कि नेवरदलेस वी हैव द बेस्ट बेस्ट बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। और इसका सबूत सिर्फ मेरी बातें नहीं, ऐसा नहीं कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, एक स्टेट मीडिया पर बैठा हूँ और आज का दिन है तो इससे मंसूब मुझे बातें करनी है। ये हमने कई बार इस गुफ्तगू को शर्मिंदा ताबीर किया है, ख़ास तौर पर अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, चंद दिन पहले की ही बात है, चंद महीनों पहले की ही बात है कि दुश्मन को लगा कि शायद उसके पास टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है, मशीन बेहतर आ गई है तो वो हमारे साथ मुकाबला कर सकता है। लेकिन मिसल मशहूर है कि इट्स नॉट अबाउट द मशीन, इट्स अबाउट मैन बिहाइंड द मशीन। यही वजह है कि जदीद तरीन राफेल होने के बावजूद भी ना सिर्फ पाकिस्तान के शाहीनों ने अपने तैयारे सेफली लैंड करवाए, उनके राफेल भी मार गिराए। ये छोटी चीज़ नहीं है। तो आज का दिन फ़ख्र करने का दिन है, प्राउड करने का दिन है, दुआओं में अपनी फ़ौज को, अपने पाक फ़ज़ाइया के पायलट को, शाहीनों को याद रखने का दिन है। लेट्स सेलिब्रेट इट।

बाय द वे डॉक्टर साहब सॉरी बोल रही हैं मुझे. नहीं नहीं सॉरी की जरूरत नहीं है. मैंने जैसे कि पहले कहा एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपका वो एक्सप्रेशन था तो मेरे साथ तो फिर ये ट्राई करो ही मत यार, मेरे साथ ये ट्राई मत करो. लेकिन अगर उनके साथ छेड़ाछाड़ी थी तो फिर इंजॉय द लाइफ, वो भी कर रहे हैं आप भी करो. लेकिन अगर मेरे साथ था, मेरे साथ तो ये ट्राई करो ही मत, सही बता रहा हूँ.

जवान हैं, ये वो सपूत हैं जिनकी माएं, बहनें, बेटियां, बीवियां इनके बाजुओं पर इमाम जामिन बांध कर इनको कहती हैं खुदा के हवाले किया, खुदा हाफिज। ये वो सपूत हैं जो एक तमगा हासिल करने के लिए अपनी जान निछावर करने से भी दरेग नहीं करते, और वो तमगा मंसूब है मर्द मैदान, मर्द बहरान, शाह जज़दा, शाह मर्दा, कुवते परवरदिगार, जनाबे हैदर, तमगाए निशाने हैदर।

वो जवान है, ये वो सपूत है जिनके लिए वतन अजीज की हिफाजत, वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। ये वो जवान है जो पाकिस्तान के लिए न सिर्फ पसीना बल्कि खून बहाने से भी दरेग नहीं करते। ये वो जवान है, ये वो सपूत है जो इस बात को जानते हैं कि ये जमीन माँ है और तमाम माओं से अजीम तर है। ये वो जवान, ये वो सपूत है जो बुलंद करते हैं अल्लामा अब्बास। ये वो जवान, ये वो सपूत जो लंबरदार है अल्लामा अब्बास के। कुव्वते परवरदिगार, शेरे यजदा, शाहे मर्दा, हैदरे कर्रार, खुदा के सिपाही, पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए परवाज भरने वाले, इनकी परवाज को कोई गुमान नहीं।

वतन तूने सदा दी तो तेरे बेटे तेरी बेटियां चले आते हैं। ये जमीन हमारी पहला और आखिरी हवाला है। वतन अजीज की मट्टी मेरे माथे का झूमर है। मुतमईन हूं कि मुझे याद रखेगी दुनिया, मुतमईन हूं कि मुझे याद रखेगी दुनिया जब भी इस शहर की तारीख वफा लिखेगी। मेरा मातम इन्हीं गुमनाम गलियों में होगा, मेरा नाहा इन्हीं गलियों की हवा लिखेगी। वतन अजीज की मट्टी, वतन अजीज की धूल मेरे माथे का झूमर। हाथों में अलम अब्बास, दिलों में जुर्रत हैदर कर्रार। पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान की फजाई सरहदों के मुहाफिज। और हां, स्कोर याद करा दूं, इट्स 7-0।

माएं, ये बहनें, ये बेटियां, ये बीवियां, अपने जवानों को रुखसत करते हुए एक लम्हा नहीं घबराते। वजह मकसद बड़ा इतना है, इन्हीं तौर पर फख्र है उन माओं को अपने बेटों पर, उन बहनों को अपने भाइयों पर, बीवियों को अपने शौहर, उन बेटियों को अपने बाप पर, जो वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं, जामिन इमाम है, क्योंकि इमाम जामिन है। भाई वाह।

हिसार में है इश्क दायरा।

ये बेटे पाकिस्तान के बेटे हैं। पर पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत का अज़्म लिए परवाज भरते हुए ये शाहीन पाकिस्तान के शाहीन हैं। हाथों में अलम अब्बास, दिलों में जुर्रत हैदर कर्रार। अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए, हवा में परवाज भरते हुए ये शाहीन पाकिस्तान के शाहीन हैं।

हैप्पी डिफेंस डे। पूरे पाकिस्तान को डिफेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। यौम-ए-दिफा पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो।

से चल लम्हात के बाद सेगमेंट शुरू करूंगा। चंद मजीद कॉल उसके बाद सेगमेंट शुरू करूंगा। 0519002540

0: ओके जनाब, आई थिंक वी शुड बी स्टार्टिंग। मेरा ख्याल से हम थोड़ा सा सेगमेंट पहले शुरू करते हैं ताकि फिर कुछ जिक्र के लिए टाइम हमारे पास एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम बच जाए। बट बिफोर दैट वी हैव अ कॉलर विद अस। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हमारे साथ कौन है, कहां से? हेलो
1: जिशान, वेरी नाइस, आपने बहुत जबरदस्त फोन को गरमाया है और खूब जनाब फजा पैदा कर।
0: बस आप बस इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट 23rd ऑफ मार्च की परेड होगी ना, मैं ही उसमें होस्टिंग करूंगा, कमेंट्री मैं ही करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ।
1: आवाज ही बंद हो गई
0: जना, सुनाए। हेलो, आवाज आ रही?
1: अच्छा लगा,
0: बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा है, कितना अच्छा लगा आपको?
1: बहुत अच्छा
0: लगा। चले, बड़ी मेहरबानी आपकी। और कुछ कहना चाहेंगी? आप रेडियो पे सुन ले, रह ना जाएं कहीं। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, 051-920-2540 and 0111-111-000-101 and 051-920-2540 ये रابطے का नंबर है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम
2: सर, कैसे आप? ठीक
0: जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। सजाद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं?
2: अल्लाह का करम सर, बिल्कुल ठीक ठाक।
0: सर क्या कहना चाहेंगे?
2: पहले तो मैं आपके शो सुन रहा हूँ डेली, काफी देर से अब कब शब सुन रहा हूँ, और उसके बाद अभी मैं ऑन ड्यूटी और इस्लामाबाद।
0: अरे जबरदस्त,
2: तीन जगह से अल्हम्दुलिल्लाह गाजी हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: और अभी जो रिसेंटली जो पिछली दफा जो बात का हक हुआ था, उस टाइम कश्मीर,
0: उस टाइम आप कश्मीर में थे। जबरदस्त जबरदस्त। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप बताइए, आज तो आपका दिन भी है, हुक्म कीजिए, क्या कहना चाहेंगे?
2: बस यही है कि जज्बे के साथ लगे रहोगे तो मंजिल मिलेगी, वरना आग खाते रह जाओगे।
0: सही बात, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है इसमें।
2: तो बस यही चीजें इंसान को आगे भी लेके जाती, यही चीजें इंसान को हर जगह पे लेके जाती।
0: सही बात है,
2: इंसान जहाँ तक जाएगा अपनी किस्मत को लेके जाएगा।
0: सर आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं?
2: कम करें सर।
0: सर मुझे ना चनार क्लब में रहने का बड़ा शौक है, आपकी अरेंजमेंट करवा सकते हैं?
2: मैं नौकर।
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, सलामत रहे। मैं सिर्फ थोड़ा सा मजाक कर रहा था।
2: असल में बहुत गरीब, मैं पता क्या है, असल में कश्मीर रह के हूँ, चित्राल रह के हूँ, चित्राल में हमारी ड्यूटी रही है
0: ना।
2: हाँ। में ड्यूटी है अभी, खुद अभी मैं इस्लामाबाद में न्यू टेक में ड्यूटी कर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो ओल्ड एयरपोर्ट के पास है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वही ओल्ड एयरपोर्ट के पास। मैं बल्कि डिप्यूट रहा हूँ कुछ अर्सा वहाँ पे। चलें, बहरहाल ये बातें हम फिर कभी के लिए रखते हैं, इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, कभी मुलाकात हुई तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, मैं कुछ अर्सा वहाँ पे रहा भी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मैं एक आरजे हूँ, एक अच्छा रेडियो प्रेजेंटर हूँ आपका, मासूम सा क्यूट सा, ऐसा ही है ना, आप लोगों का आरजे हूँ मैं, तुम लोगों का आरजे हूँ बस।

0: करें जी, कौन सा लॉकेट है जिसकी आवाज आ रही है? असल में एक चेन में दो लॉकेट हैं, तो आपस में टकराते हैं तो आवाज आती है।
1: होए होए होए होए होए होए होए होए होए।
0: अब जो बात मैं कहने लगा हूँ बा खुदा, अभी रैंडमली ये सवाल था, मैंने इसका जवाब दिया, साथ ही जुमला जहन में उतरा। अब जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अगर खामोश रहे तो तुम्हारी मर्जी है साहब। मैं जिगर का खून नचोड़ के अब तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ एक जुमले में, उसके बाद सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद वापस आएंगे इस जानेब। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन सा लॉकेट है कि जिसकी इतनी टकराने की आवाज है? असल में एक चेन में दो लॉकेट है, एक पत्थर है जिसपे नादे अली इंग्रेव्ड हुआ है और दूसरा अलमे अब्बास है। अब जाहिर है एक मयान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती, और हो भी एक मयार की, ओ भाई होए होए होए होए होए। बल्कि द अदर डे समवन टोल्ड मी इवन, वो एक काफी बुजुर्ग थे, काफी मार्फत इलाहिया रखने वाले शख्स थे। मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, बात कर रहा था, तो उन्होंने जब नोटिस किया तो उन्होंने कहा, अच्छा अब समझ में आया कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है।

मेरे इंस्टा पे जाइए, आपके लिए कुछ अपलोड किया है वहाँ पे, जाइए क्या याद रखेंगे। कुछ तस्वीर अपलोड किया है वहाँ पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जिशान नासिर, एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, जिशान नासिर 26। यहाँ पे आप जाएंगे आपको एक स्टोरी मिलेगी।

आपको मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप तसल्ली से स्टोरी देख लीजिए, उसके बाद वापस आइए, कुछ आपको बताना है, उसके बाद हम सेगमेंट शुरू करेंगे। अब मुझे डर ये है कि इस कैफियत से हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैंने सेगमेंट स्टार्ट करना है। बस एक जुमला आपके हवाले करूंगा, उसके बाद फिर सेगमेंट शुरू करूंगा। जरा जल्दी से स्टोरी देख आइए, फिर जुमला आपके हवाले और फिर सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ। वापस आएंगे हम इस पर।

अरे मैं सदके जाऊं, बहुत सारे लोग ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि क्या कभी ऐसा मुमकिन है कि आपसे मुलाकात हो तो उसको टच कर सकें। जरूर, व्हाई नॉट। अगर आपकी कभी ख्वाहिश हो और कभी मुलाकात आपकी हो तो कभी आप चाहें तो जरूर कहिएगा, आप कर सकते हैं। खुश रहें यार, खुश रहें, आप लोगों की मोहब्बतें ये अकीदतें सलामत रहें।

शख्सियत से मोहब्बत कुछ अलग है। और फिर अलम अब्बास, हजरत अब्बास, बस इनसे कुछ लेवल ही अलग है, ये रास्ता ही अलग है, इनकी मोहब्बत का जो रास्ता है वो अलग है। अब ये कोई वही समझ सके या जान सके या रिलेट कर सके जो इस हवा से जो है मुस्तफीद हुआ हो। सही अब्बास अब्बास।

चले आए वापस आए, जरा हाजिरी लगाएं कि आप मौजूद हैं। तो बस फिर एक वाक्य मैं आपके सामने रखूं और फिर सेगमेंट की तरफ जाएं। जल्दी से जरा हाजिरी लगाएं, हाथ बुलंद कर लें, जी कह दें, कुछ भी कह दें ताकि मुझे पता चल जाए वापस आ चुके हैं। जरा एक हाजिरी लगाएं, उसके बाद मैं जुमला आपके हवाले करूं, फिर जुमला आपके हवाले करके एक मिनट का टाइम दूंगा, रिएक्शन देखूंगा। अब अगर आप खामोश बैठे रहे, बड़ा दुनियादार है वो बंदा जो अब खामोश रहे, अब खामोश बैठे रहे तो आपकी मर्जी है साहब। So,

एक सेकंड दीजिए मैं जरा। हाँ जनाब, तो बात कुछ यूं है कि मौला से कहा गया, मौला बेटे मौजूद हैं, जंगे सफीन का मैदान मौजूद है, बेटे मौजूद हैं, जनाब हसन मौजूद हैं, जनाब हुसैन मौजूद हैं, बाकी बेटे मौजूद हैं, जनाब अब्बास मौजूद हैं। इंतखाब किया गया जनाब अब्बास का, सफीन का मैदान है, पहली जंग है। इमाम अली के इंतखाब को अब्बास कहते हैं। तो मालिक अश्तर ने सवाल किया कि कमसिन हैं, छोटे हैं, जंग का तजुर्बा नहीं है, तो मौला इंतखाब, आपके इंतखाब पर शक नहीं है लेकिन कमसिन हैं और बेटे मौजूद हैं जिनको जंग का तजुर्बा है, मौला अगर वजह बता सकें, आपके यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है जो बेमकसद हो, बेवजह हो, तो इस इंतखाब की वजह अगर बता पाए। अब शायर ने तखयल की दुनिया में लिखा, वजह क्या है, इमाम अली की एक ख्वाहिश है, जिस ख्वाहिश को सामने रखते हुए जनाब अब्बास का इंतखाब किया गया जनाब अली की तरफ से। अब वो ख्वाहिश शायर ने तखयल की दुनिया में कलम बंद की, आपके हवाले कर रहा हूँ, आप जिस मकाम पर जाकर सुनना चाहें इसको सुने, आपकी मर्जी है साहब। शायर कहता है कि जब मालिक अश्तर ने कहा ना कि चांद एक सब अक्से जली हैं, चांद एक सब अक्से जली हैं, मौला किससे कहूं ये सारे ही अली हैं। जब मौला से उन्होंने कहा ना कि चांद एक और सब अक्से जली हैं, मौला किससे कहूं ये सारे ही अली हैं, तो जनाबे अली ने जवाब दिया कि जब ये सारे अली हैं, मालिक अश्तर कह रहे हैं सारे ही अली हैं, आप जिसका भी इंतखाब करें कमाल होगा, लेकिन हजरत अब्बास का ही इंतखाब क्यों। तो शायर ने तखयल की दुनिया में सवाल लिखा ना कि चांद एक सब अक्से जली हैं, मौला किससे कहूं सारे ही अली हैं, तो जवाब तखयल की दुनिया में शायर ने कलम बंद किया है, जवाब इमाम अली का आपके हवाले कर रहा हूं, नायाब मोती की तरह मखमल के कपड़े में लपेट के आपके हवाले कर रहा हूं। जितने कदरदान आप हैं, अगर जौहरी हैं तो मोल डालिएगा, पहली सफ में बैठे वो बंदा अब जो जुमलों का कदरदान है, जो जुमलों का खरीदार है, चांद एक सब अक्से जली हैं, किससे कहूं मौला यहां सारे ही अली हैं, तो जवाब आया कि वलियों का वली लड़ता है कैसे। सवाल ये आया कि जब सारे ही अली हैं तो मौला किसी ऐसे का इंतखाब कर लीजिए जो थोड़ा सा तजुर्बा रखता हो, तो कमसिन है, तजुर्बा नहीं है, तो जवाब आया कि वलियों का वली लड़ता है कैसे। अब एक ख्वाहिश है जिसका इजहार कर रहे हैं जनाब इमाम अली अलैहि सलाम मालिक अश्तर को, अब वो क्या है जरा सुनिएगा। मौला फरमाते हैं कि वलियों का वली लड़ता है कैसे, वलियों का वली लड़ता है कैसे, वलियों का वली लड़ता है कैसे, दिल है मेरा कि मैं भी आज देखूं, वलियों का वली लड़ता है कैसे, ता खुदा मैं सारी रात ये जुमले कहता रहूं, मेरा दम निकल जाए ये जुमले कहते कहते, इन जुमलों का हक अदा नहीं होता, दाद नहीं चाहिए, दुआ चाहिए, हाथ बुलंद हो जाएं तो बुलंद हाथों से दुआ करना, दाद जहां से चाहिए मलाइका लेकर आएंगे, हाथ बुलंद होते ही उसको हैं जिसको वहां से खैरात मिलनी हो। वलियों का वली लड़ता है कैसे, जुमला मुकम्मल करके आपके हवाले कर रहा हूं, खत्म हो गई गुफ्तगू मेरी। वलियों का वली लड़ता है कैसे, वलियों का वली लड़ता है कैसे, और मालिक अश्तर दिल है मेरा, मालिक अश्तर दिल है मेरा, मैं भी तो देखूं कि अली लड़ता है कैसे।

आप इस जुमले को समझे या नहीं समझे, मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे डर ये है कि हम इस कैफियत से आगे कैसे बढ़ेंगे। बाखुदा मैं जानता हूँ ना आप बढ़ पाएंगे ना मैं बढ़ पाऊंगा, बस चंद लम्हात मुझे और दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि हम सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ें। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, जरा मौला की अर्ज तो समझिए ना भाई। कोई मुल्क का बड़ा जंगजू कह रहा है यार वो जरा सीख कर तो आओ अली तलवार कैसे चलाता है, यार उसकी आंखों में कुछ है, वो देखता है तलवार गिर जाती है, जो मुखालिफ है वो कांपने लग जाता है। अरे वही अली जिसने मरहब को पिछाड़ फेंका, अंतर को पिछाड़ फेंका, हारिस को पिछाड़ फेंका, अमर इब्ने वद को पिछाड़ फेंका। भाई दुनिया तारीफ कर रही है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, खुदा करे कोई ऐसा बोलने वाला हो मैं आपको पहली सफ में बैठकर बताऊं कि सुना कैसे जाता है। हाय हाय हाय हाय हाय वाह, खुदा कोई बोलने वाला हो मैं पहली सफ में बैठ के सुनूं और सुनाऊं और बताऊं कि सुना कैसे जाता है। मालिके अश्तर जी है मेरा। हाय हाय हाय वाह, खुदा कोई बोलने वाला हो मैं पहली सफ में बैठ के सुनूं और सुनाऊं और बताऊं कि सुना कैसे जाता है।

किरण कांप रहा है रन एक तरफ, चरखे कहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, हर सलातीन जमन कांप रहा है, सर बकफ देख कर हैदर के पिसर को, जिब्राइल लरसते हैं समेटे हुए पर को। मालिके अश्तर, मैं भी तो देखूं अली लड़ता है कैसे।

दूर हो जा नजर से मुश्किल, वरना अभी मुश्किल कुशाश कहता हूँ। दूर हो जा नजर से मुश्किल, वरना भी मुश्किल कुशाश कहता हूँ। अब जो आने लगा वो डराने लगा, अब मैं किधर किधर जाऊं। अब जो आने लगा वो डराने लगा, नाम उसका है दरे कर्रार है, चेहरे से जुर्रत नमूदार है, उसके पैरों से लिपटी हुई है कजा। अब जो आने लगा वो डराने लगा, नाम उसका है दरे कर्रार है, उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, उसके पैरों से लिपटी हुई है कजा। वो मोहम्मद के काफले का सालार है। ओए होए होए होए। अब जो आने लगा वो डराने लगा, उसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, नाम है दरे कर्रार है, उसके पैरों से लिपटी हुई है कजा। वो मोहम्मद के काफले का सालार है।

बस एक जुमला फिर आगे जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं बढ़ पा रहा। जो ऐसा था, जुमला समेट रहा हूँ, जुमला समेट के आपके हवाले करके एक मिनट का टाइम, ठीक 12:50 पे सेगमेंट शुरू कर दूंगा, वादा है मेरा। ठीक 1.5 मिनट आपके पास मौजूद है, सेगमेंट करके फिर वापस आऊंगा दोबारा। जो ऐसा था, बस जुमला खत्म कर रहा हूं, जुमला खोलूंगा नहीं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे तफसीर में नहीं जाऊंगा गुफ्तगू की। जो ऐसा था वो एक यतीम बच्चे के पास बैठा रहा, तब तक बैठा रहा जब तक वो मुस्कुरा नहीं दिया।

कल रात तकरीबन 2 बजे मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने जैसे ही मैसेज ओपन किया तो उस पे एक साहब हैं, उनका वो मैसेज था, बुज़ुर्ग थे, तकरीबन 65 साल उनकी उम्र रही होगी। मुझे उन्होंने मैसेज किया कि ज़िशान, क्या आपसे बात हो सकती है। मैंने, ज़ाहिर है उनकी तस्वीर लगी हुई थी, बुज़ुर्ग थे, तो मैंने उसी टाइम मैसेज किया, जी हुक्म कीजिए। तो उनका अगला जुमला ये था कि क्या आप कहीं पर बायोमेट्रिक दे सकते हैं जाके। मैं आपको मनोअन बात बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ज़ाहिर है मैं उनको जानता नहीं था, कभी पहले बात नहीं हुई है मेरी उनसे, बिल्कुल पहली बात थी। मतलब उन्होंने कहा, सलाम ज़िशान, कैसे हैं आप? मैंने आगे से कहा, वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा, बात हो सकती है आपसे? मैंने कहा, जी हुक्म कीजिए। अब ये 5वां मैसेज उनका ये आया कि क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कहीं पर बायोमेट्रिक देना है तो दे सकते हैं आप? मैंने उनसे आगे क्वेश्चन मार्क भेजा और कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने फिर, शायद उनको लगा कि मैं समझ नहीं पाया, तो उन्होंने फिर वही जुमला दोबारा रिपीट कर दिया कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे अगर आपका बायोमेट्रिक दरकार हो, अगर मैं कहूँ कि कहीं पे जाके आपने बायोमेट्रिक लगाना है तो आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन आपको क्यों चाहिए? तो उनका 7वां मैसेज ये था कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी गाड़ी है वो मैं आपके नाम करा सकूँ। सुनते जाइएगा। अब मुझे वहां पर कंफर्म हो गया तकरीबन 100% कि ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, शुगल कर रहे हैं, रैंडमली बस रात में बैठे होंगे, कोई भी आईडी सामने आई तो उन्होंने कहा, चलो इनके साथ जरा शुगल लगाता। अब जब मुझे ये 100% जाहिर है, जिस तरह अभी आप सुन रहे हैं तो आपको भी हैरानी हुई और आप भी समझ रहे हैं कि बात हकीकत के करीब तरीन नहीं है ना। कोई भी रैंडम शख्स आपको मैसेज करे और कहे कि मुझे आप अपनी गाड़ी आपके नाम करवानी है, तो मैंने उनको आगे से, अब जैसे वो मजाक कर रहे थे या मुझे लग रहा था कि वो मजाक कर रहे थे, तो मैंने पलट कर वही पैंतरा उनके ऊपर खेला। मैंने कहा, जी बिल्कुल, आप जहां कहेंगे, इससे बेहतर कौन सी बात हो सकती है? मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे ग्लाइडर मोड पे 5वां 6ठा मैसेज किसी का ये हो कि भाई बायोमेट्रिक, आप पूछे उनसे कि भाई क्यों चाहिए बायोमेट्रिक, तो मैसेज आया कि मैं अपनी गाड़ी आपके नाम करवाना चाहता हूं, तो आउट ऑफ 99.9% लोग आउट ऑफ 100% यही समझेंगे कि मजाक हो रहा है या प्रैंक हो रहा है। तो मैं भी चूंकि काफी थका हुआ था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, और वो थे भी अंकल ही थे। मुझे यकीन जानिए, मेरे जहन के कहीं पिछले हिस्से में ये भी था कि बुजुर्ग हैं, 60-65 साल उम्र है, हो सकता है वैसे ही बैठे हों, थोड़ा शुगर लगाना चाह रहे हैं, तो मैंने उस सेंस को भी जहन में रखते हुए मैंने कहा चलो थोड़ा शुगर ही लगाते हैं। तो मैंने वॉइस नोट किया उनको कि जी बिल्कुल क्यों नहीं, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है, आप बताएं कहाँ पर आना है, लेकिन बस आप ये वाला डॉक्यूमेंट जरा मुझे भेज दीजिए ताकि मैं इसकी कॉपी करवा के साथ ही लेता हूं। अब जो डॉक्यूमेंट मैंने उनसे मांगा वो बड़ा पर्सनल डॉक्यूमेंट था, मतलब वो ऐसा डॉक्यूमेंट था कि अगर फर्ज करें कि वो किसी के पास आप किसी को दे दें तो 40-50% ये बात कही जा सकती है कि आपने गाड़ी उसको सेल कर दी है। ठीक है, मैंने 2-3 चीजें और भी मांगी और इजहार तफन्नुन नहीं मांगी कि मतलब आप ऐसा करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे कि भाई मैं आपको 1 करोड़ भेजना चाहता हूं, तो आप कहें हाँ ये अकाउंट नंबर ले मेरा और इसमें भेज दें। ठीक है, आपको पता है ना उसने भेजना है ना आना है। खैर, मैंने उनसे कहा हाँ बिल्कुल आप बताएं सुबह कहां पर आना है, मैं आगे बायोमेट्रिक देता हूं, मीनवाइल तब तक आप जरा ये 2-3 डॉक्यूमेंट मुझे भेज दें ताकि मैं बाकी फाइल तैयार कर लूं। मतलब मैंने इस तरह एक सरकैज़म में, एक तंज में जुमला कहा। जनाब, मैंने ये मैसेज सेंड किया तो ठीक 5 मिनट के बाद मुझे वो डॉक्यूमेंट्स आ गए, और जो कि पहली दफा मुझे एक झटका सा लगा। मतलब जाहिर है इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगु नहीं थी, मैं उनको जानता नहीं था, पहली मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई जिंदगी में कभी भी, तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा झटका था कि नहीं यार ये मजाक नहीं। अगर तो जाहिर है मेरे माइंड में था कि मजाक है, तो मैंने भी मजाक में मैसेज किया, लेकिन जब वो 5 मिनट के बाद वो टक टक करके वो डॉक्यूमेंट्स आए और स्कैंड डॉक्यूमेंट्स आए, एक तो होता है ना तस्वीर लेके किसी ने भेज दी हो तो वो यू नो इतनी
करामत नहीं होती, उसके ऊपर भी खैर लोग मैनिपुलेशन कर लेते हैं, लेकिन स्कैंड कॉपीज आई और मैं एकदम जरा सीधा सा हो गया कि भाई ये क्या चक्कर है यार। तो मैंने आगे से लाफिंग इमोजी भेज दिया, हंसने वाला, और साथ लिखा कि सर आप जिस तरह ये मजाक कर रहे हैं किसी और बंदे के साथ ना कीजिएगा, कोई वाकई ही अगर थोड़ा सा तेज या शातिर निकल आया तो आपके लिए मसला हो जाएगा, आपके इस डॉक्यूमेंट को मिस यूज कर सकता है वो। तो उन्होंने आगे से मुझे मैसेज भेजा कि अगर मुझे ये चीजें ना पता होती तो मैं सिर्फ आपको क्यों मैसेज करता कि मैं आपके नाम ट्रांसफर करना चाहता हूं। अब मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसके बाद क्या रिप्लाई उनसे कहूं या क्या कहूं, तो मैंने उनको वही रिप्लाई किया जो आपके जहन में आ रहा होगा इस टाइम के, सर क्या आप मुझे जानते हैं? उन्होंने कहा आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैंने कहा आप मुझे रेडियो के हवाले से जानते हैं? उन्होंने कहा कुछ रेडियो के हवाले से कह लीजिए, कुछ और हवालों से कह लीजिए। मैंने कहा और किन हवालों से आप जानते हैं? तो उन्होंने दो चार मुझे ऐसे हवाले दिए जहां पर मुझे ये एहसास हुआ कि वो मुझसे रियल लाइफ में अगर बिलमुशाफे मिले नहीं आके तो कम से कम उस जगह पे मौजूद जरूर रहे हैं जहां पर मैं परफॉर्म कर रहा था या काम कर रहा था या मौजूद था, चाहे वो मेरे से आके मिले ना हो, हाथ मिलाया ना हो या मेरी डायरेक्ट उनसे बात ना हुई हो, लेकिन वो उस जगह मौजूद जरूर रहे हैं जहां पर मैं था। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे जहन में ये पॉइंट आया कि या तो किसी ने इनकी आईडी हैक कर ली है या कोई किसी ने इनको प्रैंक का कुछ इस तरह, बिकॉज दैट डज नॉट मेक सेंस ना। आपको कोई कितना ही पसंद क्यों ना हो, किसी की कितनी ही बातें क्यों ना पसंद हो, बट ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि आप उसको रैंडमली कॉल करके भाई कि मैं ये आपके नाम ट्रांसफर करना चाहता हूँ अपनी गाड़ी। मैंने उनसे खैर रिप्लाई उनको किया कि सर इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, मतलब मैंने बात को ख़त्म करना चाहा, मजाक था या नहीं था, वो सीरियस थे या नहीं थे, मैंने बात को वाइंड अप करना चाहा कि भाई, और मैंने उनको एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया कि सर आपने जो मुझे डॉक्यूमेंट भेजे थे मैंने डिलीट कर दिए, और लिटरली मैंने डिलीट कर दिए। आप यकीन करें कि उन्होंने मुझे स्कैन कॉपीज भेजी थी, मैंने डिलीट करके मैसेज में से उनको स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया कि सर आपने जो भेजी थी मैंने डिलीट कर दी है, सो प्लीज़ डोंट सेंड इट अगेन नाउ ताकि मिस यूज़ ना हो जाए, और थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। मतलब शुगल में अभी भी मैंने यही बात गर्दानी, यही बात मेरे जहन में रहेगी, यार शुगल चलो कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर थैंक यू, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू करके बंद कर दिया मैंने। तकरीबन 10 मिनट के बाद उनका एक मैसेज आया, और वो मैसेज कुछ यूं था, अब जाहिर है मैं उसमें थोड़ा सा एडिट करूंगा, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो मैसेज कुछ यूं था कि आप मुझे एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं अगर आप को बेहतर लगे तो मुझे सिर्फ आपके 10 मिनट चाहिए। अब मैं पहले ही आपको क्या मैंने अर्ज कर दिया कि मैं इसमें कुछ एडिट कर रहा हूँ, जाहिर है वो एक 2-3 मिनट का मैसेज था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि जाहिर है बहुत ही पर्सनल लेवल पे थी उनकी, तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मतलब थोड़ा सा उसका कोर ये था कि आप मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं और आप ही बचा सकते हैं, या मुझे लगता है कि आप ही बचा सकते हैं, तो आप 10 मिनट अगर मुझे दें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप फ़ोन पे कर लीजिए। कहा नहीं फ़ोन पे नहीं। खैर 2-3 मैसेज का तबादला हुआ, मैंने उनको एक जगह बता दी कि ठीक है आप सुबह यहाँ पर आ जाइए, मैं वहाँ पर शूट कर रहा हूँगा, और शूट के दौरान जो लंच ब्रेक होता है तकरीबन आधे पौने घंटे का, उसमें हम मिल लेंगे, आप वहीं पर आ जाएं, जिस जगह मैं शूट कर रहा हूँगा उसके बिल्कुल साथ कोई रेस्टोरेंट होगा, हम वहाँ जाके खाना खा लेंगे, बी माई गेस्ट। और मेरे जहन में ये था कि शायद अंकल इस टाइम पे इस लम्हे में शायद थोड़ा इमोशनल हैं, या थोड़ा सा शायद होता है ना इस उम्र में आके इंसान थोड़ा सा वैसे भी सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी कमज़ोर हो जाती है इंसान की, 65 साल एक उम्र है। तो मुझे था कि शायद अंकल आज सोएंगे तो जब सुबह उठेंगे तो शायद याद भी नहीं होगा कि क्या बात हुई है। खैर उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे अपना नंबर दें, मैंने नंबर नहीं दिया। मैंने कहा आपके पास इंस्टा है, बस आप इंस्टा पे कर लें। अब उन्होंने जब इसरार किया तो मैंने बहाना ही लगाया कि मेरे पास नॉन PTA फ़ोन है, मेरे पास सिम वाला फ़ोन नहीं है, मैं सिर्फ इंटरनेट यूज़ करता हूँ वाईफाई के थ्रू, तो आप बस इस पर रहें, आप बेफिक्र रहें,
उन्होंने कहा मैं अगर आ भी गया तो आपको ढूंढूंगा कैसे। मैंने कहा आप बेफिक्र हैं, आप यहाँ पहुँच के मुझे मैसेज कर लीजिएगा, जिस भी जगह आप जाएंगे वाईफाई आपको इस्लामाबाद में हर होटल में मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। खैर बहरहाल अब मेरे जहन में ये था कि ना ये सुबह इन्होंने आना है ना कोई इशू है, मैं भूल भी गया लिटरली। मैं सो गया, मैं सुबह उठा, मैं तैयार हुआ, तैयार होकर अपने जो भी मेरी असाइनमेंट थी शूट था मैं वहाँ पहुँचा। आप यकीन जाने मेरे जहन में नहीं था, और एग्जैक्ट जो टाइम हमारा डिसाइडेड था 1 बजे का, एग्जैक्ट 1 बजे उनका मैसेज आया, एग्जैक्ट ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, एग्जैक्ट 1 बजे मैसेज आया कि मैं फलां जगह जो आपने बताई थी मैं वहां पर खड़ा हूं। अब एक लम्हे को मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं मिलना चाहिए या मैं ना मिलूं, और मैं क्या, बहुत सारे आम से लोग जो हैं वो जाहिर है जो सुन रहे होंगे वो यही मत्थे पे हाथ मार रहे होंगे कि अब ये क्या बंदा इसका करे, और ये हकीकत भी है। आई हैव बिन टोल्ड इवन एंड इवन आई हैव बिन सजेस्टेड बाय मैनी पीपल, अब ये मैनी पीपल इन्वर्टेड कॉमाज में कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने जो बड़े बेहतरीन जगह पर फायज हैं, बहुत इन्वर्टेड कॉमाज में आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि जिशान प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इसको कोशिश करें अगर आप अवॉइड कर सकते हैं फॉर द यू नो कुछ फॉर द लॉन्गर टाइम। खैर एनीवे अब मेरे जहन में आया कि यार आई शुड अवॉइड, दूसरे लम्हे मेरे जहन में आया कि नहीं यार 65 साल का बंदा है, बूढ़ा है, मैंने बुलाया है, अब वो आ गया है तो मुझे मिल लेना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। खैर मैं वो जहाँ पे शूट हो रहा था उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 5 मिनट की डिस्टेंस पे वो जगह थी जहाँ मैंने उनको बताया, मैं पहुँच गया वहाँ पे। मैंने अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं, मैं ऑब्वियसली आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे सुन रहे होते हैं, ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता उस चीज़ को, तो आप समझ जाएं जो मेरे सेफ्टी मेजर्स थे वो मैंने अपने साथ कैरी किए। और ख़ास तौर पर यंगस्टर जो सुन रहे हैं ये भी सीखिए, जब आप बहुत सारी बातें बताते हैं तो यूज़ स्पेसिफिक वर्ड जिससे बात पहुँच भी जाए और यू नो आपका जो एक डेकोरम है वो भी मेनटेन रहे। तो वो जो सेफ्टी मेजर्स थे मैंने अपने अपने साथ कैरी किए और मैं पहुंच गया। अब मैं यहां पे 1 मिनट के लिए रुकूंगा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप मेरे साथ हैं, कोई ऐसी चीज है जो अब तक आपको समझ में ना आई हो, या कोई ऐसी चीज है जो मतलब क्लियर ना हो आपको, बिकॉज मैं इस तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहता कि कोई चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं है और मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो सिर्फ आपके पास 1 मिनट का टाइम है, मुझे बताइए, फिर हम इससे आगे गुफ्तगू करते हैं। हम पहुँच चुके हैं कि वो साहब आ चुके हैं, और ये आज की बात है, आज दोपहर की बात है, आज दोपहर की, आज दोपहर 1 बजे की।

ٹھیک ہو گیا ہے. آپ لوگوں کے میسیجز سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ ساری گفتگو بغور سن رہے ہیں اور ساتھ ہیں. اب یہ جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں یا جو احوال اب آگے آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں, یہ آج کا قصہ ہے. میں نے شاید پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے سیگمنٹ اتنے جلدی بنا دیا. عمومی طور پر جب میں کسی ریئل میٹنگ کے اوپر سیگمنٹ بناتا ہوں تو ظاہر ہے اس پوری کہانی کو میں پروسیس کرتا ہوں, پھر اس میں سے دیکھتا ہوں کہ کتنی کہانی سمجھائی جا سکتی ہے, بتائی جا سکتی ہے, فدا کانفیڈینشیلٹی کتنا جو ہے اس کو ہم نے کانفیڈینشیل رکھنا ہوتا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آج ابھی ایگزیکٹ 12 گھنٹے پہلے, 1:05 ہو رہے ہیں ابھی, اور دوپہر 1 میں اس جگہ پہ موجود تھا. تو ود ان 12 اب میں آپ کے سامنے معاملات کو رکھ رہا ہوں. خیر بہرحال میں وہاں پر پہنچا, چونکہ میں نے ان کی تصویر انسٹا پہ دیکھی تھی, انہوں نے مجھے دیکھا تھا, تو جیسے ہی میں انٹر ہوا تو ہم نے پہچان لیا, انہوں نے مجھے پہچان لیا, میں نے ان کو پہچان لیا. تقریباً 65 سے 70 سال کی عمر کے ایک باریش بزرگ جو کہ صحت کے حوالے سے کچھ بہت زیادہ بہتر نہیں لگ رہے تھے. ان کو چلنے میں ایشو تھا, کھڑے ہونے میں ایشو تھا, اور خیر جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے اٹھنا چاہا تو میں فٹافٹ ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا بیٹھیے, میں نے ان کو گلے لگایا, میں نے کہا جی السلام علیکم, وعلیکم السلام, گفتگو شروع ہوئی, بیٹھ گئے, کھانا آرڈر کیا. تو میں نے ان سے کہا جی جناب حکم. تو جب میں نے ان سے کہا کہ حکم, تو انہوں نے میرے سامنے فائل, ایک جو ڈاکومنٹس کی فائل ہے وہ رکھ دی. تو جب میں نے رینڈملی, اب انہوں نے فائل سامنے رکھی, تو میں نے جب اوپن کیا اس کو, تو وہ سارے ڈاکومنٹس اس کے اندر موجود تھے جو کہ آپ کو گاڑی ٹرانسفر کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے. سارے وہ ڈاکومنٹس تھے, سارے وہ لیگل ڈاکومنٹس. مطلب اگر اس ڈاکومنٹ کو میں اپنے ساتھ رکھ لوں, اس فائل کو میں اپنے ساتھ لے آؤں, تو اس شخص کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وہ گاڑی ہے. مطلب اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ایفیڈیوٹ, اتھارٹی لیٹر, وہ سب کچھ, اسمارٹ کارڈ, وہ ساری چیزیں کا ایک انہوں نے وہ فائل بنا کے وہ میرے سامنے رکھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں دینا چاہتے ہیں مجھے گاڑی؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کو کب کہا کہ میں گاڑی دینا چاہتا ہوں؟ تو میں نے نا جیسے ایک تعجب سی ایک نظر ہوتی ہے, میں نے کہا سر کل سے ہماری یہی بات ہو رہی ہے, ابھی آپ فائل بھی لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری کل سے لے کر ابھی تک کی گفتگو میں کہیں پر یہ بات میں نے آپ سے کہی کہ گاڑی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں؟ تو میں نے تھوڑا سا ذہن میں زور ڈالا, اور بات حقیقت تھی, انہوں نے پوری گفتگو میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں کہی تھی جب سے بات شروع ہوئی تھی. اب ایک عام آدمی ایک عام فہم میں, اگر فار ایگزامپل میں کسی کو بھی کال کر کے کہوں کہ میں گاڑی آپ کے نام ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں, تو وہ یہ ایزیوم خود کر لے گا, میں بھی ایک انسان ہوں نا, تو وہ خود ایزیوم کر لے گا کہ ٹرانسفر سے مراد ہوتی ہے کہ مجھے دے رہا ہے یا میرے حوالے کر رہا ہے یا مجھے دینا چاہتا ہے نا, اس کی کسٹڈی میرے حوالے کرنا چاہتا ہے. مطلب میں کسی کو بھی اگر کال کر کے کہوں کہ بھائی میں گاڑی تمہارے نام ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے ذہن میں دوسری تھاٹ تو یہی آئے گی نا کہ یار میرے حوالے کر رہا ہے کسٹڈی. لیکن بات ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ کل سے جب سے بات ہو رہی تھی ان سے, انہوں نے ٹرانسفر کا ذکر کیا, بایو میٹرک کا ذکر کیا, ڈاکومنٹس بھیجے سب کیا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں, آپ کے نام ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں لیکن رکھنا اپنے پاس چاہتے ہیں, اس کی وجہ؟ اب آپ جب بہت زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے نا آپ کو چیزوں کا, تو آپ کا دماغ جب آپ نے ہائپر ایکٹیو موڈ پہ اس کو آن کیا ہوتا ہے نا, تو وہ بہت ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بھیج رہا ہوتا ہے, موقع کی مناسبت سے آپ کو سگنل دے رہا ہوتا ہے, یہ سگنل وہ سگنل. تو جب انہوں نے کہا کہ میں نام آپ کی کروانا چاہتا ہوں, رکھنا خود چاہتا ہوں, تو میرے خیال میں یہ آیا کہ شاید ان کا کوئی بلیک منی ہوگا, مطلب تو وہ شاید اپنے نام نہیں کروانا چاہتے تو بلیک منی ہوگا ان کا, تو میرے نام یا کوئی اس طرح کوئی گیم کر رہے ہیں, مجھے کہیں گے میں تمہیں تھوڑے بہت پیسے دیتا ہوں تو بس تمہارے نام گاڑی رہے گی, استعمال میں کرتا رہوں گا, تمہیں میں 2-2.5 لاکھ روپے دے دوں گا. انسان ہے, ایسے ایک انسانی سوچ ہوتی ہے جیسے آپ کے بھی ذہن میں آ رہی ہوگی, تو میرے ذہن میں بھی وہی چیز بلنک آن کی کہ مجھے لگ رہا ہے اس کا کوئی کرپشن کا پیسہ ہے یا کوئی بلیک منی ہے ان کا, اور یہ اپنے نام پہ نہیں رکھنا چاہتے تاکہ ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں یا کسی بھی اور چیز سے بچنا چاہتے ہیں, اور اپنے نام نہیں رکھنا چاہتے, گاڑی خود رکھنا چاہتے ہیں, ٹرانسفر کسی اور کے نام کروائیں گے, اور ان کو شاید لگا کہ یار بھلا سا آدمی ہے, بس ٹھیک ہے تھوڑے بہت پیسے دوں گا تو مان جائے گا. تو میں نے ان کو کہا کہ سر آپ میرے نام کیوں کروانا چاہتے ہیں, آپ اپنے نام کروائیے. جب میں نے ان کو یہ کہا نا کہ آپ اپنے نام کروائیے, تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ یوں فضا میں بلند کیے,
मेरे सामने ना, मतलब आप यूं समझिए कि जैसे आप और मैं आमने सामने बैठे हैं और मैं आपसे कहूं कि आप अपने नाम करवाइए, तो आप यूं दोनों हाथ फजा में बुलंद करें और आपकी हथेलियां, यानी कि जो आपकी हथेलियां हैं वो मुझे नजर आ रही हों, फेस कर रही हों। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि मैं आपसे कहूं कि भैया आप अपने नाम क्यों नहीं करवाते, तो आप दोनों हाथ यूं मुझे दिखाएं अपने, जैसे इंसान अपनी हथेलियां दिखाता है ना बुलंद करके, वैसे उन्होंने अपनी दोनों हथेलियां फजा में बुलंद की। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने कहा सर प्लीज़ अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सके। अब चूंकि वो उम्र के उस हिस्से में थे जहां पर मैं थोड़ा सा सख्त नहीं हो सकता था उनके साथ, मतलब अगर 25, 30, 35, 40 साल वाला कोई बंदा होता तो मैं किसी और अंदाज में भी बात करता, लेकिन अब आप इमेजिन करें कि 65, 70 साल का शख्स, बुजुर्ग, दाढ़ी, सफ़ेद बिल्कुल, थोड़ी सी सेहत के हवाले से भी मामला ठीक नहीं, बोलने में भी कोई इतनी ज़्यादा रवानी नहीं, एक बात अगर कर रहे हैं तो दो घूंट पानी पी रहे हैं, तो ज़ाहिर है मैं उस तरह उस लहजे में भी उनसे बात नहीं कर सकता था। सो उन्होंने जब दोनों हाथ में फ़ज़ा में बुलंद किए और मुझे दिखाए तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने कहा सर, तो उन्होंने फिर थोड़ा करीब किया हाथों को, तो मुझे पता चल गया, जैसे इंसान को पता चल जाता ना कि आपको कोई शो कर रहा है। तो मैंने जब उनके हाथ गौर से देखे तो मुझे एक अजीब सी चीज़ नज़र आई, और वो चीज़ ये थी कि उनके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो तकरीबन ना होने के बराबर था। मतलब उनके हाथ बिल्कुल स्मूथ थे, बिल्कुल स्मूथ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ पहली दफ़ा देखी है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मतलब मैं समझा नहीं कुछ। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र के हवाले से ये मामला मेरे साथ हुआ, या मुझे इसके साथ साथ कुछ स्किन का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मेरे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो स्कैन ही नहीं हो पा रहे, मेरा बायोमेट्रिक हो ही नहीं रहा। सो दैट्स वाई ये गाड़ी बेसिकली मैंने खरीदी है और मैं अपने नाम ही करवाना चाहता था, लेकिन मैं कोई एक साल से कोशिश कर रहा हूँ कोई किसी तरह बायोमेट्रिक को, मेरा बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे कहा सर अगर ये मामला है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका बायोमेट्रिक फॉर एनी रीजन नहीं भी अगर हो रहा, तो आपका बेटा होगा, बेटी होगी, अगर औलाद नहीं है तो कोई ताया, चाचा, मामा, भतीजा, भतीजी कोई होगा, आप उनके साथ क्यों नहीं? वो कह रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भतीजे भतीजी जो है मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है। मैंने कहा बेटा बेटी, जब उन्होंने कहा ना बेटा और बेटी, मैंने जब कहा कि बेटा और बेटी, तो उन्होंने कहा मेरा कोई नहीं है, और लिटरली उनकी जैसे आवाज़ भर सी जाती है ना इंसान की। अब मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पे मसला कुछ गड़बड़ है, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि बंदा हार्मलेस है। जितनी दुनिया मैंने देखी है, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, लेकिन जितनी दुनिया मैंने देखी है, मैं असेसमेंट बहुत जल्दी कर लेता हूँ इंसान की। सो मैंने इसकी असेसमेंट कर ली कि बंदा हार्मलेस है। तो जब मैंने उनसे कहा कि बेटा या बेटी, तो रोहानसी से हो गए। मैंने उनसे कहा आपकी वाइफ, कहते हैं 21 साल पहले इस दुनिया से चली गई। मैंने कहा आपके बच्चे, कहते हैं मुझे छोड़कर किसी और मुल्क चले गए हैं। मैंने कहा आते जाते रहते होंगे आपके पास। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से ज़ाहिर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कोर आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आते रहते होंगे आपके पास। उन्होंने कहा कि वो 5 साल के बाद एक ईद पर आए और मेरे पास नहीं आए, मैं अकेला रहता हूँ, दो मुलाजिम हैं मेरे, मैं अपने पूरे घर में अकेला रहता हूँ, और काफ़ी वेल ऑफ आदमी है वो, काफ़ी बड़ा घर है उनका। उन्होंने कहा कि मैं इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ, दो तीन मुलाजिम हैं मेरे, 5 साल के बाद मेरे बच्चे आए तो मेरे पास नहीं आए, उनकी एक आंटी है उनके पास गए।
जब मुझे पता चला कि वो वहाँ पर आए हैं, तो मैं उनके पास वहाँ पर मिलने गया। तो जैसे ही मैं घर के अंदर गया, तो उन्होंने कहा कि चलें हम फिर चलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा, अगर आप मेरी वजह से जा रहे हैं तो आप मत जाएं, मैं चला जाता हूँ। तो मैंने उनसे वही सवाल किया जो इस वक्त आपके जहन में होगा कि क्यों, आपके बच्चे हैं, अगर आपसे नाराज़ भी हैं तो इतने नाराज़ क्यों हैं, क्या वजह है? उन्होंने कहा कि जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ तो मेरी बेटी की उम्र उस वक्त 13 साल थी और मेरे बेटे की उम्र उस वक्त 10 साल थी। मैंने दूसरी शादी नहीं की इस वजह से कि इनके ऊपर सौतेली माँ ना आ जाए और माँ और बाप दोनों बन के इनको पाला। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मेरे बेटे ने ख्वाहिश का इजहार किया कि उसको सफ़ेद बतखें चाहिए। वो कहते हैं मैं उसको कॉलेज रोड लेकर गया, वहाँ से नहीं मिली। मैं यकीन करूं कि सारा दिन घूमता रहा, मैं सफेद बख्ते नहीं मिली कहीं से, और बिल आखिर एक जगह से बतखें मिली सफेद कलर की, और शाम हो चुकी थी और मैं बिल आखिर बतखें उसको दिलाकर ही घर लाया। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मुझे ये ड्रेस चाहिए और सुबह मेरे कॉलेज में ये फंक्शन है, मेरे स्कूल में ये फंक्शन है, तो मुझे ये ड्रेस चाहिए। वो ड्रेस कहीं से मिला नहीं, तो मैंने एक दर्जी को उठा के उसको 3 गुना पैसे देकर वहीं बैठकर उससे ये ड्रेस सिलवाया। मैंने कहा, सर आपने इतनी मोहब्बत दी, अगर इतना प्यार दिया जो आप कह रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपके बच्चे इतने नाराज हैं आपसे, क्या आप लोगों के दरमियान इतनी खफकी है? उन्होंने कहा कि जब वो बच्चे बड़े हुए, 20-21 साल की उम्र में पहुंचे, जाहिर है मैं अकेला था, तो उन्होंने रात 2-3 बजे जब घर आना, और ख़ास तौर पर बेटी ने रात 2-3 बजे घर आना, तो मैंने उनको कहना कि खुदा के लिए मेरी सफ़ेद दाढ़ी का ख्याल करो, मेरी सेहत का ख्याल रखो, जब तक तुम नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आती है, मैं सो नहीं पाता हूँ, तो कोशिश करो कुछ असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारो। वो कहते हैं कि एक दो तीन दफा जब मैंने समझाया, तो चौथी बार एक दिन दोनों बहन भाई सामने बैठे और मुझे बैठकर कहा कि आपको कोई हक नहीं है कि हमें रोक सकें, हम जो चाहेंगे करेंगे, हमारा जब दिल करेगा हम आया करेंगे, सो मेहरबानी करके हमारी जाती जिंदगियों पे अपनी चारादारी मत रखें। मैंने उनसे पूछा कि बल्कि मैंने उनसे कहा, और शायद उनको मेरी ये बात थोड़ी सी बुरी भी लगी कि उनको लगा शायद मैं बच्चों को एडवोकेट कर रहा हूँ। मैंने कहा, सर खैर है, बच्चे हैं, रात में अगर लेट भी आते थे तो कोई इतना, ये तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो किस कैफियत के साथ बाहर रहते थे। अब मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सर ये कोई इतना बड़ा वैसे मसला नहीं था कि अगर 18, 19, 20 साल, 21 साल के बच्चे थे और रात को लेट आते थे घर। उन्होंने कहा, तुम एक बाप हो? मैंने कहा, नहीं सर। उन्होंने कहा, फिर तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा, सर मैं समझ जाऊंगा, मैं बहुत समझदार हूं। मेरी कोशिश ये थी कि वो बहुत सारी गुफ्तगू करते करते बीच में रोना शुरू कर देते थे और मुझे बड़ा तकलीफ होती थी उनको देख के। और आज मैं, वो एक शेर है कि आज उसने दुख भी अपने मुझसे अलहदा कर लिया, आज मैं रोया तो मेरे साथ वो रोया ना था। तो इसके बरक्स वो जब जब रोते थे मेरी आंखों से खुद आंसू निकल जाते थे, विदाउट नोइंग द मैटर ऑफ द फैक्ट कि अभी आगे क्या बात उन्होंने करनी है, क्या मामला है। क्योंकि अभी तक तो मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि एक वालिद ने डांटा और बच्चे नाराज़ होकर चले गए, चलो मनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन वो जब गुफ्तगू करते थे तो रोना शुरू कर देते थे, और वो ज़ाहिर आसपास लोग बैठे थे, मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती थी, और मैं खुद भी वो बुजुर्ग एक 65-70 साल का बंदा आपके सामने रो रहा है, 2-3 दफ़ा तो मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए। खैर मैंने उनको हौसला दिया, मैंने उनसे कहा कि अब मेरे जहन में ये था कि मैं साथ साथ थोड़ी सी लाइटर नोट पे इनसे गुफ्तगू करता जाऊंगा, तो थोड़ा हंसते भी जाएंगे, थोड़ी बात भी करते जाएंगे, और थोड़ा सा मैं उनको हौसला ये देता जाऊंगा कि सर ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। तो मैंने उस पस मंजर में उनको कहा कि सर ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं था वैसे, कि अगर 20-21 साल के अगर बच्चे थे रात को 2-2.5 बजे भी आते थे। तो उन्होंने काउंटर नैरेटिव में मुझे कहा कि तुम बाप हो? मैंने कहा, नहीं। कहते तुम नहीं समझोगे? मैंने कहा, मैं समझूंगा सर, आप मुझे समझाएं। उन्होंने कहा कि जब 2-2.5 बजे आपकी बेटी किसी के साथ घर वापस आए,
तो एक बाप के लिए बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है। अब ये वो लम्हा था जहां पर मुझे थोड़ा सा झटका लगा कि यार वाकई ये तो बहुत मुश्किल चीज है। तो मैंने उनको वही बात कही जो शायद आपके जहन में अभी आ रही हो कि मैंने कहा सर वैसे अगर ऐसा था, अब जाहिर है वो इतना सेंसिटिव एक इशू था, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि अगर कुछ चीज़ें आपको बीच में बेरब्त लगें तो मैं अभी, मैंने चूंकि इस सेगमेंट को तैयार नहीं किया तो मैं ऑन अ गिवन टाइम रनिंग टाइम इसको एडिट कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता। एडिट से मुराद है कि कुछ ऐड नहीं कर रहा लेकिन कुछ चीज़ें निकाल रहा हूँ बीच में से जो उनकी बहुत पर्सनल थी। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि अंकल अगर फ़र्ज़ करें बच्ची की उम्र 20-21 साल थी और वो किसी के साथ इन्वॉल्व थी, अब लफ्ज़ों का चुनाव आपको ज़ाहिर है जो भी हो बेशक नाराज़ भी हो, है तो वो उसकी बेटी ना, तो मैंने कहा सर अगर सिस्टर फॉर एग्जांपल किसी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी भी तो आपके लिए बेहतर नहीं था कि आप उनकी शादी करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने उसको पहली बार देखा ना मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से रूह खींच लिया किसी ने, क्योंकि मैंने इन बच्चों के लिए अपनी सारी जवानी जाया की, शादी नहीं की दूसरी। कहते मैं तकरीबन 40-42 साल का था जब मेरी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई, मैं बिल्कुल जवान था, चाहता शादी कर सकता था, दूसरी शादी नहीं की कि कहीं इनको सुतेली माँ ना सहनी पड़ जाए, खुद अकेला रहा, तन्हा रहा, और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं पर ये मुझे समझेंगे या कोई ऐसी बात होगी तो मेरे साथ करेंगे। तो कहते हैं बार कैब जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्ची है, घबरा रही है, डर रही है, मैं बाप हूँ, माँ जिंदा होती तो शायद माँ को बता पाती। तो कहते हैं खैर जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो मैंने खुद उस बच्ची को बुलाया, अपनी बेटी को, और कहा कि बेटा अगर तुम इसको पसंद करती हो तो मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करवा सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि उन्होंने आगे से मुझे कहा कि ये सिर्फ मेरे साथ कुछ वक्त के लिए है, शादी मैं किसी अमीर शख्स से करूँगी, ये इतना अमीर नहीं है लेकिन ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी में इसके साथ बन गई है, ठीक है हम साथ हैं, रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ शादी का आप बिल्कुल ना सोचें, और शादी आज आपने बात की दोबारा बात ना कीजिएगा, जब मेरा दिल होगा मैं तब करूँगी। वो कहते हैं जब उन्होंने ये बात की, और यकीनन ये बात कोई बाप हो तो इस चीज़ को समझे कि अगर एक बाप के सामने एक बेटी ये बैठ के कह रही है कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं किसी लड़के के साथ हूँ, शादी बहरहाल मैंने इसके साथ नहीं करनी, शादी मैंने किसी खरब पति के साथ ही करनी है, लेकिन ठीक है एक अंडरस्टैंडिंग इसके साथ बनी हुई है तो जब तक चल रही है चल रही है, शादी बहरहाल मैं मेरे जहन में नहीं है कि मैं शादी इसके साथ करूँगी भी कि नहीं। तो वो कहते हैं कि जब उसने ये बात की तो जाहिर है मैं बाप था, मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया, जब मैंने गुस्सा किया तो उसी असना में उसका भाई यानी कि मेरा बेटा भी आ गया और वो दोनों मेरे मुखालिफ हो गए और मेरे इतना इस अंदाज में मुझसे बात की कि आप तो पागल हो गए हैं, आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको तमीज़ नहीं है, आपको इखलाकियात नहीं है, आपको ये नहीं पता कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते, आपको ये नहीं पता कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जो है दखल अंदाजी नहीं करते, आपको शर्म आनी चाहिए, आप बेटी से ऐसी बात करें। कहते हैं कि उन्होंने मुझे आधा घंटा इस तरह की गुफ्तगू मेरे साथ की कि उस रात मुझे चार गोलियां दिल की, चार गोलियां बीपी की और चार गोलियां नींद की खा कर सोना पड़ा। उन्होंने कहा बारल मैं उस रात सो गया और मुझे यही था कि सुबह मैं उठूंगा तो दोनों मेरे पास आएंगे, शायद उनको गलती का एहसास होगा, माफी मांगेंगे, मैं बाप हूं मैं माफ कर दूंगा। सुबह हुई और वैसा ही हुआ। वो कहते हैं मैं सुबह उठा, चूंकि हस्बे आदत माँ उनकी नहीं थी और पिछले 15-16-17 साल से यही एक हस्बे मामूल रहता था कि सुबह मैं उठता था, मुलाजिम खाना बनाता था, नाश्ता बनाता था, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को नाश्ता करवाता था। तो कहते हैं मैं डाइनिंग टेबल पे आया, मेरे बच्चे नहीं आए, मुझे लगा कि शायद खाइफ हैं, डरे हुए हैं या नाराज़ हैं। मैंने मुलाजिम से कहा कि उनको बुला कर लाओ, तो मुलाजिम ने कहा कि उन्होंने कहा है कि हम कुछ देर में आते हैं। वो तो कहते हैं बार कैफ में बैठ गया, कुछ देर में दोनों आए, उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनका मुझे बिल्कुल पहले से एहसास था कि उन्होंने क्या बात करनी है, मुझे पता था कि शायद सारी रात गुजरी है
उनको एहसास हुआ होगा कि उन्होंने कितनी संगीन गलती की है। माफ़ी मांगेंगे, मैं माफ़ कर दूंगा, बाप हूँ, समझाऊंगा, समझ जाएंगे। एक मिनट का टाइम है आपके पास। वो बच्चे अब अपने वालिद के पास आए हैं कुछ कहने के लिए। यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो या जिसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ सफ़र करें, खुदा करेगा नतीजा बेहतर निकलेगा। एक मिनट का टाइम है आपके पास, हुक्म कीजिए। मैं इंस्टा देख रहा हूँ, फेसबुक देख रहा हूँ।

बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता कि मैं सेगमेंट के दौरान या जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो बीच में इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट ब्रेक्स लूँ, लेकिन बाखुदा आपसे मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें इमोशनली मुझे चंद लम्हात चाहिए होते हैं सांस लेने के लिए भी, उस सफोकेशन को ब्रेक करने के लिए भी, और ये जानने के लिए भी कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। तो दोनों मामला तो उसमें हो जाते हैं। और अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो आपको एक बार फिर याद करवाता चलूं, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि बेहतरीन से बेहतर मशवरा अगर मेरे से किसी ने मांगा हो, ये फरमान भी है कि मशवरा अमानत है, जब कोई मांगे तो उसको बेहतरीन सूरत में वापस करना चाहिए। आपने मुझे हमेशा मौजूआत पर गुफ्तगू करते सुना है, देखा है, सजेशन लोगों को देते सुना है। आज मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। जब मैं सेगमेंट क्लोज कर लूँ तो वो सवाल जो मैंने आपसे कहा था कि अपने जहन में रखिएगा, वो दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ, और फिर जब सेगमेंट ख़त्म करूँगा तो रखूँगा। क्या मुझे बताइएगा कि क्या मैंने अपनी सोच या समझ के तहत जो फ़ैसला लिया वो ठीक लिया या नहीं लिया? बार कैफ आगे बढ़ता। उन्होंने कहा कि कुछ देर के बाद वो बेटा बेटी जो मेरे थे वो आए, और मेरे जहन में यही था कि माफ़ी मांगने आए हैं, माफ़ी मांगेंगे, मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा हम जा रहे हैं। मैंने उससे कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, बाबा हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, हमें लगता है कि अब हम आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, मैंने जितनी आसानी में आपके साथ कह दिया और आपने सुन लिया। ये जुमला कहने के लिए उस बुज़ुर्ग को तकरीबन 5 मिनट लगे होंगे। उसने इस जुमले के दौरान 4 बार गालिबन पानी पिया, 3 बार उनकी सांस उखड़ी, 2 बार उनको खांसी आई होगी अंदाजन, और ये जुमला मुकम्मल करते हुए उनकी आंखें मुसलसल बहती रहीं, मुसलसल। और चूंकि अब मैं कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझ चुका था, जैसे अभी आप समझ चुके हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने 40-42 साल की उम्र में होते हुए भी शादी नहीं की, ज़िंदगी तन्हाई में गुजारी, तमाम तर वसाइल होते हुए हर चीज़ अपने बच्चों पर सवारी, अपनी ज़िंदगी, अपनी मोहब्बत इवन, वो बतखों वाला वाक्या, वो कपड़ों वाला वाक्या, कोई भी ऐसा मामला, तुमने कहा कि उन मेरे बच्चों ने कहा कि बाबा अब हमें ऐसा लगता है कि हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमारी ज़िंदगी आपके साथ बेहतर नहीं है, इसलिए हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम जा रहे हैं, हम अलग रहेंगे, हम आपको वीकेंड्स पे मिलते रहेंगे। वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात कही कि हम जा रहे हैं और हम आपको वीकेंड्स पे मिलते रहेंगे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी टांगों में से किसी ने जान निकाल ली है, मुझे किसी ने मफलूज कर दिया है, माजूर कर दिया है, कयामत गिर गई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि बच्चे मेरे सामने क्या बात करें। वो बच्चे हैं जिनको मैंने माँ और बाप दोनों बन के पाला। मैंने कहा जी ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरे जहन में ये था कि वो बच्चे अलग-अलग हो गए होंगे, वीकली मिलते होंगे, अब जाहिर है शायद इस चीज़ को भी 2-4 साल गुजर गए हैं, तो बेटी ने भी शादी कहीं कर ली होगी, बेटे ने भी कर ली होगी, वीकली आते जाते रहते होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप बच्चे आते हैं? उन्होंने कहा कि 5 साल हो गए हैं मैंने अपने बेटे और बेटी को नहीं देखा। तो मैंने उनसे कहा कि आप कोशिश करें, अगर आप खुद चले जाएं, आप वालिद हैं, ठीक है मैं मानता हूं कि वो गलती पर हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर बच्चे हैं, नादान हैं, अगर गलती हो भी गई। उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं की होगी कोशिश? उन्होंने कहा कि ईद आई, मैंने ईद भेजी, गिफ्ट भेजे, सालगिरह पर गिफ्ट रख लिए, ईदी रख ली, लेकिन मुझसे बात नहीं की। मैंने उनसे कहा कि आखिरी बार जब आपने उनको देखा तो 5 साल हो गए हैं, जिस जगह पर वो रह रहे हैं कोई इतना दूर भी नहीं है, जाहिर है मैंने जैसे पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें मैं एडिट कर रहा हूँ बीच में, तो मैंने कहा जहाँ पर आप बता रहे हैं कि वो रह रहे हैं वो इतनी दूर भी नहीं है, आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब वो वहाँ नहीं रहते, वो पिछले 5 साल से, 4-5 साल से यूके में शिफ्ट हो गए हैं।
मैंने उनसे कहा कि आप जाते रहते हैं अपने बच्चों के पास। अब जो रात गुजरी थी, मैंने उसमें जब उनसे बात हो रही थी, तो जब ज़ाहिर है मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू डू, तो ही सेड के आई एम लिविंग द रिटायर्ड लाइफ एंड कोई लाइबिलिटीज़ मेरे ऊपर नहीं है, बच्चे शादीशुदा सेटल्ड हो चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो कह रहे थे कि बच्चे शादीशुदा हो गए। अब ये वो बात थी जो कि बिल्कुल शुरू शुरू की, उन्होंने हाय हेलो के बाद दो तीन मैसेज भेजे थे मुझे जब इंट्रोडक्शन हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आपने तो मुझे कहा था कि बच्चे शादीशुदा हैं, आप मिलते भी हैं इवन यूके जाके। तो उन्होंने कहा मैंने झूठ बोला था आपसे, एक अजनबी को मैं क्या बताता, मैंने झूठ बोला आपसे। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनसे कहा कि अब आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में जो हुआ है वो अब अंडू नहीं हो सकता, ये जख्म मेरे साथ जाएगा। और ये बात करते हुए मुसलसल रो रहे थे। मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं बात करूं उनसे। उन्होंने कहा खानदान के हर फर्द ने उनसे बात की और जो उनसे बात करता है वो उससे रिश्ता तोड़ देते हैं, वो नफरत करते हैं उससे। मैंने उनसे फिर वही रिपीटेडली सवाल किया कि इस नफरत की क्या वजह है। उन्होंने कहा इस नफरत की वजह शायद बाप की वो थोड़ी सी सख्ती थी, जो इतने ज्यादा प्यार होने के बावजूद वो थोड़ी सी सख्ती शायद गालिब आ गई कि बाप ने कहा कि वक्त पर आया करो, किसी नाजायज ताल्लुक में ना रहो। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि शायद अब कभी वो मेरे पास ना आए। मैंने उनसे कहा कि सर अब अगर वो आपके पास ना भी आए, फर्ज करें कि अगर आपसे वो माफी मांग लें या सुलह कर लें, जब यूके से आते हैं तो आपके पास रहें हफ्ता डेढ़ फिर चले जाएं कुछ इस तरह का, तो ये भी ठीक है, अब तो वो उस उम्र से गुजर गए हैं कि जहां पे रात को लेट आए या ना आए। उन्होंने कहा मैं इतने पे भी राजी हूं कि मुझे फोन कर लें, आज 4 साल हो गए मैंने अपने बेटे या बेटी की आवाज नहीं सुनी, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि किसी दिन वो मुझे कॉल करके ये कह दें बाबा आप ठीक हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने उनसे कहा कि मैं फिर आपकी थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए बताऊं कि इसके दरमियान बहुत सारी बातें हुई, बहुत पर्सनल बातें उन्होंने की मेरे साथ जो कि ऑब्वियसली बताई नहीं जा सकती। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरा एक सवाल है आपसे। अब जब मैं ये बात उनसे कर रहा हूँ तो गालिबन अब मैं तो ज़ाहिर है चूंकि आपको एक रवानी से बात कर रहा हूँ तो आधे पौने घंटे में बात ख़त्म हो रही है, हमारी तकरीबन 3 से 3.5 घंटे की मुलाकात रही है। हमने खाना खाया, खाने के बाद हमने कॉफ़ी ऑर्डर कर ली, हम तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे बैठे रहे उस जगह पर। वो बोलते रहे, मैं सुनता रहा, मैं बात करता रहा, मैं उनसे सवाल करता रहा, वो जवाब देते रहे। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि सर मेरा एक सवाल है बाप से। अब जब मैंने उनसे कहा कि मेरा सवाल है, ये वो कैफियत थी कि जिसमें वो कंटिन्यूसली रो रहे थे और मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैंने बहती हुई आंखों से ये सवाल उनसे किया कि सर मेरा एक सवाल ये है कि आपको लगता है कि किसी टाइम पर उनको एहसास हो सकता है कि उन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने एक बात की आगे से जो कि मुझे चीर गई मुझे। उन्होंने कहा कि एहसास जब होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जमा पूंजी थी, मैंने अपने घर में एक लॉकर में कुछ डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना के रखी है, जब मैं मरूंगा तो बेटी के लिए जो मैंने जमा पूंजी रखी है वो उसको मिल जाएगी, जो बेटे के लिए रखी है वो उनको मिल जाएगी, और शायद जो उनको है कि बाप बड़ा जालिम है, बाप बड़ा जाबिर है, बाप हमारा ख्याल नहीं रखता, तो मैंने हर एक चीज़ कैलकुलेट करके कि मेरे बाद उन बच्चों को कोई मसला ना आए फाइनेंशियल। तो मैंने जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो वो खुद ब खुद जब वो आएंगे, अगर आए मेरे जनाजे पर, तो उनको सब कुछ घर में, जाहिर है जो सामान होगा वो देखेंगे, तो उसमें वो
उनको तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बेटी के लिए, उन्होंने मुझे बताया कि 2 से 3 फ्लैट, वेल ऑफ आदमी है इसमें शक नहीं है, 2 से 3 फ्लैट थे जो इस्लामाबाद की बड़ी अच्छी लोकेशन पे थे, बेटे के लिए और बेटी के लिए रखे हैं प्रॉपर्टी, जो कि, और प्रॉपर्टी लेने की वजह ये थी कि जब तक, जाहिर है वो बच्चों तक पहुंचेगी तो वो अपना रेट डबल कर चुकी होगी, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी, राधा धन के कैश फॉर्म में रखते हैं। उन्होंने कहा जब उनको एहसास होगा बहुत देर हो चुकी होगी, शायद शायद मैं उस वक्त ना हूं। ये बात कह के उन्होंने अपने आंसू साफ किए और वो फाइल मेरे आगे कर दी और कहा कि नौजवान, अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो मैंने उनसे 2 सवाल किए। पहला सवाल उनसे ये किया कि आप मुझसे क्यों इतना मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं तो आपके लिए अजनबी हूं। तो उनके पहले सवाल का जवाब ये था कि मैंने तुम्हें सुना, मैंने तुम्हें कुछ जगहों पर देखा, मैं कुछ ऐसी जगहों पर, ऐसे मामलात का हिस्सा रहा जहां पर तुम्हारे पास मौका था बहुत सारी चीजें अपने लिए करने का, लेकिन तुमने वो नहीं की। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमास में बात करूंगा ताकि मैं सिर्फ समझा सकूँ। तो मुझे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आया, या यूं कह लो कि मेरे पास जो 3-4 ऑप्शंस मैंने जहन में रखे या सामने रखे, तो उनमें से सबसे बेहतर जो मुझे नजर आया वो तुम थे, तो मैंने तुमसे रابطہ किया। ये वजह है, मुझे तुम काबिले एतबार लगे। दूसरा सवाल मैंने उनसे किया कि सर फर्ज करें जो आप कह रहे हैं हम वो कर लेते हैं, आप माशाल्लाह 65 साल के हैं, अल्लाह ताला आपको 165 साल जिंदा रखे, लेकिन खुदा ना करे आपको कल कुछ हो जाए, आपको कल कुछ हो जाए, तो मैं इसका क्या करूंगा? आपके बच्चों को सेल आउट करके आपके बच्चों को दूं, या आपके बच्चों के हवाले कर दूं, क्या करूं इसका? उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूं, सिर्फ इस स्पेसिफिक गाड़ी की बात उन्होंने की कि जब तक मैं जिंदा रहूं ये मेरे इस्तेमाल में है, जब मैं इस दुनिया से रुखसत अगर हो जाऊं, तो ये तीनों चीजें तुम्हारे इख्तियार में हैं, इनमें से जो चाहे कर लेना, चाहो तो इसको खुद रख लेना, चाहो तो बेचकर किसी की मदद कर देना, चाहो तो मेरे बच्चों को दे देना। इन तीनों में से जो चीज तुम्हें बेहतर लगी, मैं तुम्हें जीते जी ये वसीयत कर रहा हूं या ये कह रहा हूं कि तुम्हें जो बेहतर लगे तुम इसमें से कर लेना, चाहो तो ये खुद रख लेना, चाहो तो बेच कर कोई चैरिटी कर देना, और अगर चाहो तो मेरे बच्चों को दे देना। मैंने उनसे कहा सर एक चौथा ऑप्शन भी है, उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा सर वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं सर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये बहुत पर्सनल है लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा आप जो कहना चाहते हैं कहिए, उसकी वजह यह है कि मैं पिछले 2 घंटे से बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अब आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइए कि मैंने सही किया या गलत किया। मैंने उनसे कहा सर दुनिया तो किसी तौर बन सकी या नहीं बन सकी, सर कोशिश कीजिए अपनी आखिरत बना लीजिए। जिस औलाद ने आपके कुर्बानी जो आपने दी, आपकी जवानी की, आपके वक्त की, आपकी तवानाई की, आपकी एनर्जी की कुर्बानी का ख्याल नहीं रखा, और ठीक है इंसान अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए आगे बढ़ता है, घर से बाहर निकलता है, अपनी एक दुनिया बनाता है, लेकिन बाप को इस हद तक तकलीफ देना,
इस हद तक तकलीफ देना कि 65-70 साल की उम्र में बाहर बंदे ढूंढ रहा हो कि कोई मेरी मदद कर ले, या 5-5 साल उसको अपनी आवाज तक ना सुनाना, अपनी आवाज से तरसाना। तो मैंने कहा, सर मुझे लगता है कि आप दुनिया में, तो चलो आपके साथ धोखा हो ही गया, आखिरत में भी कहीं धोखा हो जाएगा सर। पंजाबी थे वो, उन्होंने बड़े प्यार से एक बात, उन्होंने कहा, पुत्र तू 10 फिर मैं की करा। एग्जैक्ट ये जुमला था, पुत्र तू 10 मैं की करा। मैंने उनसे एक सवाल किया और उस सवाल के बाद उनको एक मशवरा दिया। मैंने कहा, सर मुझे एक बात बताएं, फर्ज करें कि अगर वो बच्चे आज, डिस्पाइट बीइंग द मैटर ऑफ द फैक्ट कि 5 साल 6 साल में उन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी, कितना दर्द दिया, कितना आपको उन्होंने जो है वो दिली तकलीफ पहुंचाई, आपकी सेहत खराब हुई, आपका दिल दुखा, जो भी है, लेकिन फर्ज करें आज अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, मैं यूं बाजू फैला कर उनका इस्तकबाल करूंगा और अपने गले से लगाऊंगा। बाप बाप औलाद से कैसे दूर रह सकता है? और ये बात करते हुए फिर रोना शुरू हो गए। तो मैंने कहा, सर मेरा फिर एक मशवरा है, अभी नहीं, आप बेशक घर जाके इसके ऊपर सोचिएगा और अमल कीजिएगा अगर आपको ये बेहतर लगे। आराम से घर जाइए, सोचिए जो बात मैं कर रहा हूं, अगर आपको बेहतर लगे। कहते हैं क्या? मैंने कहा, आप अपनी एक वसीयत में तब्दीली करें, अपनी वसीयत में तब्दीली ये करें कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपकी डेथ के बाद उसमें से 1 रुपया भी आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। आप उसको किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम लगवा दें, जिसको भी आप मानते हैं, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, कोई चैरिटेबल स्कूल हो, कोई ओल्ड हाउस हो, कोई मदरसा हो, जो भी आपको लगता है कि यार ये इदारा ऐसा है जो फलाहियत के लिए काम कर रहा है, जो इंसान की फलाह के लिए काम कर रहा है, जो अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी अतात के मुताबिक काम कर रहा है, आप अपना वो सारा पैसा जो है वो नाम लगाएं उस ट्रस्ट के, और एक वादा ये कर लें कि आपकी जिंदगी में जीते जी अगर आपके बच्चों को एहसास हो गया और वो आपके पास आ गए और आपसे माफी मांग ली और आपको गले लगा लिया, फिर आपको बिल्कुल हक है कि आप उनको उनका डेजिनेटेड हिस्सा दें। मतलब फर्ज करें अगर वो आए तो आपकी जिंदगी में ही आएंगे ना, अगर आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं आए तो फिर तो कोई फायदा नहीं। अगर आपकी जिंदगी में वो आते हैं तो आप कभी भी अपनी विल चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप वसीयत लिखते हैं आप उसको 100 दफा भी चेंज कर सकते हैं। और फर्ज करें अगर कोई लिखता है कि मेरे पास 1 करोड़ है और मेरे मरने के बाद ये 1 करोड़ इस हॉस्पिटल को जाए, तो वो उसको चला नहीं जाएगा जब तक वो मर नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल उससे 1 करोड़ ले लेगा कि भैया आपने लिख दिया तो आप दे दें, नहीं, जब तक वो जिंदा है वो 1 करोड़ उसका ही रहेगा, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है सब, क्योंकि वो उसका ही है, उसी के पैसे हैं। हाँ, वो मरता है, उस 1 करोड़ में से 10 लाख रह गए, 20 लाख रह गए, अब जितनी रकम रह गई है वो हॉस्पिटल को चली जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो मैंने उनसे कहा कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपने मेहनत से बनाई है, बजाय इसके कि आप एक ऐसी औलाद को जिसने आपको इतनी तकलीफ दी, आप वो उनके हवाले कर दें, आप अपनी आखिरत के ऊपर काम कर लें। आप ऐसा करें कि विल अपनी ये रखें कि अगर मैं फौत हो जाऊं, अगर मैं मर जाऊं, तो ये जितनी प्रॉपर्टी है, मेरा जितना पैसा, आप अपनी आखिरत के ऊपर काम कर लें। आप ऐसा करें कि विल अपनी ये रखें कि अगर मैं फौत हो जाऊं, अगर मैं मर जाऊं,

1,98,00,000 जो है बच्चों में तकसीम हो जाए अगर वो आ जाएं वापस। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात कि अगर वो वापस आ जाएं आपके जीते जी अगर वो वापस आ जाएं तो आपके पास इख्तियार होगा कि आप विल तब्दील कर लें, आप अपनी वसीयत तब्दील कर लें, आपके पास इख्तियार होगा। अगर वो जीते जी उनको एहसास हो जाता है वो माफ़ी मांग लेते हैं आपसे तो आप अपनी विल चेंज कर लीजिएगा, और अगर वो नहीं आते और आप इसी तरह इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो बस फिर उस विल को रहने दीजिएगा एज इट इज़। वो विल आपके मरने के बाद खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी और वो पैसा चैरिटेबल ट्रस्ट पे चला जाएगा, आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। इस पे सोचिएगा घर जाके। रही बात इस फाइल की जो आपने सामने रखी है, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे रابطہ करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स ऐसा है जिसकी बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही है तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कोई अल्टरनेटिव होगा? बार कैफ अल्लाह ज़िंदगी दे, कुछ दोस्त हैं जो बड़ी हायर पोजीशंस में हैं, अच्छी जगह पर हैं, उन्होंने उसका अल्टरनेटिव बताया कि यार इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है, ये हो सकता है, इवन अगर स्कैन नहीं भी हो पा रहा तो एक पिक्चर क्लिक करके नादरा रिकॉर्ड को उसके साथ टैली करके बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन हो जाएगा। बहरहाल मैंने उसी टाइम वो रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हो जाएगा, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये गाड़ी आपके ही नाम हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए, आपको किसी और के नाम करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने ही नाम हो जाएगी, और जब आपके अपने नाम हो जाए तो बेशक इस गाड़ी का भी लिख दीजिएगा कि अगर जीते जी आ गए तो ठीक है दे दीजिएगा, ना जीते जी आए तो इस गाड़ी का भी कह दीजिएगा कि चैरिटी में चली जाए। खैर ये बात जब मुकम्मल हुई तो तकरीबन 4-4.5 घंटे हो गए थे, उनको भी जाना था, मैं काफ़ी हद तक लेट हो चुका था, तो मैंने उसका सर मुझे अब इजाज़त दीजिए मैं जाऊंगा, आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं, दिल हल्का करना चाहें बात करना चाहें कोई भी बात हो आप मेरे साथ कर सकते हैं, आप मेरे दादा की उम्र के हैं, आप बिल्कुल आप कीजिए आप। वो जब मैंने उनको कहा ना कि वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, मामला हो जाएगा, मैं आपको फलां बंदे का बताऊंगा, आप अपने ड्राइवर के साथ जाइएगा, वो सारे मामला था आपके कर दे, जितनी देर आप चाय पियेंगे आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन इंशाल्लाह हो जाएगी। फाइल मैंने बंद करके उनके सामने दोबारा उनके हाथ में पकड़ाई, मैं उठा मैं जाने लगा तो उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा और उसके बाद वो चले गए, कोई लंबी चौड़ी उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। पंजाबी में उन्होंने कहा कि बड़ा अजीब मुंडा है तू, बड़ा अजीब जहा मुंडा है तू, मेरी 65 साल उम्र हुई है, बड़ा अजीब मुंडा है तू और मैं बड़ा हैरान हूं अपने उत्ते। तो जब उन्होंने दूसरा जुमला, पहले जुमले पे तो मेरी हंसी निकली, मैं हम हंसे, वो भी हंसे, मैं भी हंसा, उन्होंने जब कहा कि बड़ा अजीब मुंडा है तू तो मैं भी हंसा वो भी हंसे, तो दूसरी जब उन्होंने बात की ना कि मैंने बड़ी हैरानी हुई है अपने उत्ते, तो मैंने जाहिर है वो पूछा कि क्यों हैरानी क्यों जी, मैंने कहा बस छाड़े इस गल नू, बस वो करके तो अपनी गाड़ी में बैठ गए, वो चले गए, मैं भी अपना जो काम था मैं वहाँ पर आ गया। तो मुझे कुछ देर पहले तकरीबन 8-8:30 बजे उनकी कॉल आई, उनका मैसेज आया कि कैन आई कॉल यू, मैंने कहा जी प्लीज़। कॉल आई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो दो सवाल थे उनके जवाब देने के लिए मैंने कॉल किया। पुत्र पहला जड़ा सवाल COA सी जड़ा तू मैं मशवरा देता है, तो पुत्र मैं अपने वकील नू कॉल कर दिती है, वो पीर नू आएगा तो पीर नू मैं सारी कार्रवाई करवा देंगा, मैं अपनी सारी जड़ी दौलत है अपार्टमेंट ने जमीन या जो भी मेरे को मालो दौलत है मैं अपने वकील नू कह रहा कि पीर नू आवे और विल तैयार करे मेरी, उदे च लिखा होएगा कि मेरे जींदियां जी अगर बच्चे मेरे को आ गए तो मैं विल तब्दील करके बच्चों के हवाले मामलात कर देंगा, अगर वो नहीं आए और मैं मर गया तो यह सारियाँ चीज़ा किसी चैरिटेबल ट्रस्ट नू चलिया जाएगियाँ। तो दूसरा सवाल पुत्र वो जो मैं तेनों कहा ना कि मैं अपने उत्ते हैरान हाँ, तू पूछया क्यों, तो उसका जवाब यह है पुत्र मैं 65 साल हो गए ने, जो गल्लां मैं तेरे नाल आज कीतियां ने, जो बातें मैंने तुम्हारे साथ आज की हैं मैंने अपने सगों के साथ नहीं की, अपने खून के रिश्तों के साथ नहीं की, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो 30-30 साल के मेरे पुराने दोस्त हैं, मैंने उनके साथ कभी नहीं की, और तुम्हें मैं 24 घंटे नहीं हुए तुमसे मिले हुए को, तू बड़ा खतरनाक बंदा है, तू पुछदा गया मैं दसदा गया। कहते हैं मैं रस्ते में जब घर वापस जा रहा था मैं बहुत सारी चीजें सोच रहे थे कि मैं की कीता है,
वो मेरी

सवाल शायद बहुत सारे लोगों के जहन में आ भी रहा हो और किसी हद तक सवाल सही भी जहन में आ रहा हो कि अगर वो आपको खुद ये इजाज़त दे रहे थे कि जब तक वो हयात हैं वो गाड़ी उनके इस्तेमाल में रहे उसके बाद चाहें तो आप रख लें चाहे तो चलें, अगर आप ना भी रखना चाहते हो, अगर आपकी खुद कह लें कि जो आपकी खुद मुख्तारी है या आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है सेल्फ इस्टीम है वो आपको इस चीज़ की इजाज़त ना भी देती हो, तो वो कह रहे थे कि आप बेच कर कहीं चैरिटी कर दीजिएगा, तो आप ये ऑप्शन भी बुरा तो नहीं था। हम जिंदगी में ना बहुत कुछ प्लान करते हैं और उस प्लानिंग में एक चीज़ प्लान नहीं करता जिसको मौत कहते हैं। आप फैसले तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी सांस चल रही है, आप अपने असूलों पर तब तक अमल पैरा हो सकते हैं जब तक आपकी सांस चल रही है। आपकी सांस बंद हुई, आपके असूल आपके असूल हैं, औलाद शायद जानते हुए भी आपके असूलों पर अमल पैरा ना हो, फिर क्या होगा? इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है अपने नाम के लिए, अपने मकाम के लिए, अपने घर के लिए, बेहतरीन घर बनाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, शानदार किस्म का घर बनाऊंगा, सबसे ज्यादा पैसा उसकी तज़ीन और आराइश पे लगाऊंगा, बेडरूम बनाऊंगा, अटैच वॉशरूम बनाऊंगा, वॉशरूम के अंदर बाथ टब रखूंगा, फलां टाइल लगाऊंगा, फलां सैनिटरी वर्क्स करवाऊंगा। जब आप इस दुनिया से जाते हैं आपकी इतनी अहमियत भी नहीं रखी जाती कि आपको उस वॉशरूम के अंदर गुसल दिया जाए। कभी सोचिए ये बात, कभी इस लम्हे को सोचा है जो आपके और मेरे ऊपर आने वाला है? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल, 2 साल, 10, 20, 50, 100, 200, कितनी जिंदगी है? कभी सोचा है ये जो तन्हाई हमारे ऊपर आने वाली है, ये वक्त जो हमारे ऊपर आने वाला है, जिस वॉशरूम की ताज़ीनो आराइश पे लाखों लगाए जाते हैं, आपकी मेहनत की कमाई लगाई जाती है, आपकी सांस निकल जाने के बाद आपकी इतनी अहमियत भी नहीं रहती है कि उस वॉशरूम के अंदर, उस गुसलखाने के अंदर ही आपको आखिरी गुसल दे दिया जाए। एक फट्टा मंगवाया जाता है आम सा, वो भी मस्जिद से, घर के किसी कोने में गुसल दिया जाता है, उस बेड पर भी नहीं लिटाया जाता जिस बेड को आपने बड़ी मेहनत से खरीदा होता है, एक चारपाई, और फिर उस चारपाई को इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, मोस्टली लोग मस्जिद में दे देते हैं। आपके वो कपड़े जो महंगे होते हैं उनको कोई और पहनता नहीं है, वो अलग बात है कि अगर आपकी कोई महंगी घड़ी है तो वो आपके रिश्तेदार आपके बच्चे रखेंगे, कोई महंगा जूता है तो शायद रखेंगे, कपड़े वगैरह दे देते हैं। आपको घर के आंगन में भी नहीं दफनाते कि चलो यार ये कनाल, 2 कनाल, 5 मरले, 10 मरले जमीन इसने बड़ी मेहनत से ली थी, इसको इधर ही अपने हताते में दफना देते हैं, चार दीवारी के अंदर दफना देते हैं। बाय लॉ आप दफना सकते हैं, अगर आप एक कनाल के घर में रहते हैं और आपके घर के अंदर लॉन है और अपने लॉन के अंदर अगर आप अपने वालिद को, वालदा को, बेटे को, बेटी को, किसी भी रिश्तेदार को अगर दफनाना चाहते हैं आप दफना सकते हैं, बाय लॉ आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप अपनी चार दीवारी के अंदर दफना रहे हैं तो। लेकिन लोग नहीं करते, ये नहीं कहते कि चलो यार इसने बड़ी मेहनत से घर लिया, हमारे लिए ही बनाया, इसको इधर दफना देते हैं, दिल लगा रहेगा, हम भी सुबह आते जाते दुआ पढ़ते जाएंगे, बच्चे हैं आसपास घूमते रहेंगे, इधर भी दिल लग गया रहेगा। नहीं करते ये, कभी सोचा है ये जो तन्हाई आपके और मेरे ऊपर कभी ना कभी आने वाली है इसके लिए हमने कितना कोई सामान करके रखा हुआ है? ये जो नफ्स है ना, ये नफ्स आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। क्यों? आज एक कुरान की आयत खोलूं आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इस आयत को जितना मिस इंटरप्रेट किया गया आप सोच नहीं सकते, और वो है नेक मर्दों के लिए नेक औरतें
और नेक औरतों के लिए नेक मर्द। आपने ये 10,000 मरतबा आयत सुनी होगी और हमेशा तब सुनी होगी जब आप कोई बुरे किरदार का मर्द देखें या बुरे किरदार की औरत देखें। लेकिन मैं आपको बेतहाशा ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि जिनके किरदार बज़ाहिर कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हज भी करके आ रहे हैं, उम्रे भी करके आ रहे हैं, और आप इस चीज़ को मानते हैं कि उम्रे और हज पर उसी शख्स को बुलाया जाता है जिससे अल्लाह राज़ी होता है। आप मानते हैं इस चीज़ को ना, अल्लाह का मेहमान होता है वो शख्स, उसको मौका दिया जाता है कि वो अल्लाह के घर में आए। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो सारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के ऊपर चलते हैं, नहीं जा पाते हैं, नहीं मौका मिल पाता। तो फिर वो नेक मर्द नेक औरतें, मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी हैं, आपने ज़िंदगी में देखी होंगी, बज़ाहिर किरदार की शायद कुछ बहुत बेहतर ना हो, या इवन मर्द किरदार के बहुत बेहतर ना हो, लेकिन बड़ी अच्छी ख़वातीन उनके निकाह में आ जाती हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि नेक और बद का जो मयार आपने अपने ज़हन में रखा है वो वाहिद मयार नहीं है। मौला से किसी ने पूछा कि पर्दा करना चाहिए, मौला ने कहा जरूर पर्दा करना चाहिए, सिर्फ औरत को नहीं मर्द को भी करना चाहिए। मैं यही तो बार बार कहता हूं, खुदा गारत करे यार उस शख्स को जो कि फिरके की मोहब्बत में गुफ्तगू करता हो। भाई अली को समझने के लिए, अली अलैहिस्सलाम पर बात करने के लिए किसी फिरके की मोहताजी है? कोड ऑफ कंडक्ट समझाया उन्होंने आपको, फरमाया मौला मर्द के लिए क्या पर्दा, कहा पर्दा करे हर उस शख्स से, अगर अमीर है तो अपनी दौलत का पर्दा करवाए उस गरीब से, अगर बच्चों वाला है तो अपनी औलाद का पर्दा करवाए उस बे औलाद से। जो नेमत तुम्हारे पास है और उस नेमत का पर्दा कराओ उस शख्स से जो जिसके पास वो नेमत नहीं है, ये पर्दा है। मुझे आपने कहा ना कि, या बहुत सारे लोगों के जहन में आ रही होगी बात के यार कर ही लेते, तो ये सौदा हम अपने अपने नफ्स के साथ क्यों ना कर लें, अपने नफ्स के साथ क्यों ना कर लें। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि वो नेकी बदी का मयार जो आपके जहन में है, हो सकता है वो मयार ना हो, या हो सकता है वो वाहिद मयार ना हो। हो सकता है एक मर्द कुछ भी हासिल कर सकता हो लेकिन वो उस रास्ते को नहीं इख्तियार करना चाहता और अपनी नफ्स की बात नहीं मानना चाहता और दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके सामने है ना, आपको क्या लगता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम, भाई खैबर में सबसे ज्यादा माल गनीमत मिल रहा है, घर आते हैं तो खाली हाथ हैं, सब अल्लाह की राह में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि सैयदा फातिमा तो ज़ारा सलाम अलैहा बिस्मिल्लाह आकाज़ादी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद वाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाज़ादी चक्कियां पीस रही हैं। आप इमेजिन तो करें, समझे ना, ऐसा नहीं है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम घर में बहुत वेल ऑफ हैं तो ठीक है भाई, घर में चक्की पीस रही हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम सादा जिंदगी गुजार रहे हैं, उस दौलत की जरूरत है उनको। आपने कभी इस पर्सपेक्टिव से अपने मौला को देखने की कोशिश की है? मैं बार बार कहता हूं कभी सोचे तो सही, क्या मजबूरी बन गई, क्या वजह हुई आप आज 1400 साल बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम पर झूम जाते हैं, उस दौर में कितने मुहिबाने इमाम अली अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे, तो फिर क्या वजह बन गई कि रात के आखिरी पहर इमाम को अपने इलाके के कुएं के करीब जाकर पानी में अपना अक्स देख कर कहने की जरूरत पेश आ जाए कि अली तुझे दुनिया नहीं समझी। लाखों चाहने वाले मौजूद हों, हजारों चाहने वाले मौजूद हों, आशकाने अली हों, वो क्या वजह बन गई यार कि कूफा के एक गुंजान आबाद एरिया में जाके कुएं में अपना अक्स देखकर, पानी में अक्स देखकर कह रहे हैं अली तुझे ये दुनिया नहीं समझी। सबसे ज्यादा माल गनीमत मिला, भाई वो पैसा अपनी आसाइशों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वो अली था, वो इमाम था यार। जबकि घर हमें रवायात है ना, जनाबे सैयदा चक्की पीस रही हैं, अब जनाबे सैयदा इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने ही हो जाती, भैया आपको माले गनीमत मिला था ले आते। तो अब अगर उस शख्स के हिस्से में ऐसी औरत आ गई कि जिस जो नफ्स के खिलाफ है,
उस मर्द के हिस्से में ऐसी औरत आ गई तो जिंदगी जहनुम है या नहीं है, इसको उल्टा कर लें, ऐसी औरत जिसकी जिसकी जिंदगी में नफ्स नहीं है, वो कोशिश करती है कि नफ्स के खिलाफ जाए, अब उसकी जिंदगी में ऐसा मर्द आ जाए जिसकी जिंदगी में नफ्स ही नफ्स हो, तो उसकी जिंदगी भी तबाह हो गई कि नहीं हो गई। तो ये उधार हम अपने नफ्स के साथ ही क्यों ना कर लें। इमाम अली अलैहिस्सलाम का जुमला कोट कर रहा हूं, इमाम अली अलैहिस्सलाम गए एक बार बाजार में, देखा कि एक बड़ा खालिस गोश्त, ताजा गोश्त था। सुनिएगा सुनिएगा अपने इमाम की बातें, सुने मैं कब सुनाऊंगा, आप कब सुनेंगे, मेरा पढ़ना हो आखिरी हो, आपका सुनना आखिरी हो, जिंदगी का पता कोई नहीं किस जगह पे, किस जगह पर खत्म हो जाए, किस जगह पे सांस निकल जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम बाजार गए, गोश्त देखा बड़ा ताजा गोश्त था, कसाब ने देखा, कहा अली गोश्त लीजिए बहुत ताजा है। कहा हाँ ताजा तो है। तो कहा अली चाहिए तोल दूं? कहा नहीं पैसे नहीं है। कहा नहीं पैसे नहीं है खरीदने के। कहा मौला दे दे दूं? कहा नहीं पैसे नहीं है खरीदने के लिए इसको। कहा मौला आपके लिए उधार कर सकता हूं आपके साथ। जानता था मौला है ना, उनकी सेल्फ स्टीम से वाकिफ था, उनकी खुददारी उनकी खुद मुख्तारी से वाकिफ था। ये नहीं कहा कि मौला आपको फ्री में दे देता हूं, फ्री में ले जाइए। जानता था अली से बात कर रहा है। कहा मौला कोई मसला नहीं है, पैसे नहीं है अभी, आप ले जाए, मैं आपके साथ उधार कर सकता हूं। मौला ने कहा ये उधार मैं आज अपने पेट के साथ क्यों ना कर लू, ये उधार मैं अपने पेट के साथ क्यों ना कर लू। ऐसे नहीं दीवाने यार, ऐसे नहीं जान देने के लिए तैयार, हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार। दुनिया हैरान है, अंगुष्ठ बादंदान है कि भाई क्या पागल है ये लोग। हम पागल नहीं है, हम पागल नहीं है, हमारे जिस्मों ने नहीं, हमारी रूहों ने बैत की है अली की, हमारी रूहों ने अली की बैत की है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि हम बेयकीन लोगों को नाम है, कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि हम बेयकीन लोगों को नाम हैदर से रब्त क्यों है। शजी जाने कि खैबर हुफत्ता मंदी का राज क्या था, शजी जाने के बद्रो खैबर की फतहा मंदी का राज क्या था, अलीम जाने के वो इल्म के कौन से खजीनों का नाखुदा था। मुझे तो बस ये खबर है कि वो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुओं में रचा बसा था, वो मैदान में सुर्ख पा हो रहा था तो नबी की खातिर, वो अहद में लड़ रहा था तो नबी की खातिर, बस उसको महबूब जानता हूं। बस उसको महबूब जानता हूं, उसको सरदार मानता हूं। बाखुदा हम पागल नहीं है, बाखुदा ऐसा नहीं है हमें दुनिया का पता नहीं है, बाखुदा ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि लोग कैसे करते हैं। हम करने पे आए तो शायद उनसे बेहतर फनकार हैं, शायद जुबान उनसे बेहतर चला लें, शायद दिमाग इस काम पे लगाएं तो उनसे बहुत बेहतर लगा लें। एक नहीं दो नहीं तीन बंगले खड़े कर दें, हर वो चीज हासिल कर लें जिसकी दुनिया ख्वाहिश करती है। हम पागल नहीं हैं, अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं हम पागल नहीं हैं, बार बार जिक्र करते हैं हम पागल नहीं हैं, उसके नाम पे मचल जाते हैं, झूम जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, हम पागल नहीं हैं, पागल नहीं हैं, बस जिस्म ने नहीं रूह ने अली की बैत की है। वो साकिये मन है, वो किबलाओ मन है, वो रूहे यारे मन है, वो इश्क है, वो सरदार है।
वो इमाम है, वो अली है।

पहली सफ में न सही मौला, आखिरी सफ में ही सही। तेरे रिंदों में कहीं अपना नाम आता है। हम दरे शाहे नजफ पे बहुत देर से पहुंचे, एक मनसब था गुलामी का जो कंबर ले गया।

मेरे साथ हैं या नहीं, ये खामोशी तवज्जो की है ना। अगर आप थक गए हैं तो बस मैं खुदा हाफिज करता हूँ, अदरवाइज जस्ट 15 मिनट और।

सीधे वक्त पछाड़ा नहीं तो क्या हुसैनी, शायर कहता है दिल से तो कहते हो लब्बैक हुसैना, दिल से कहते हो लब्बैक हुसैना, तो फिर दिल से यजीदियों का डर क्यों नहीं जाता। कहते तो हो अस्वाए हुसैनी पर कायम, कहते तो हो के अस्वाए हुसैनी पर हो कायम, तो दरबार में खुद क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता। इस मनकबत में एक मकाम आया, एक जुमला आया जिसमें मनकबत खान ने कहा कि इबादत खड़ी रही हुसैन अलैहिस्सलाम पुश्ते नबी पर बैठे रहे, वो अलग बात 61 हिजरी 10 मुहर्रम का दिन 9 लाख का मजमा नवासे रसूल घेरे में, भूखा प्यासा जिस्म में कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां तीर नेजे का निशान ना हो, आवाज़े बुलंद खुदा से इश्क़ का इकरार करता हुआ अनल हक अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता हुआ, शाह छिकन लगा फल बरछीदा होई कुल मुरसल हैराने। लोगों ने कहा 10वीं मुहर्रम की सुबह चढ़ेगी तो देखेंगे किस तरह से अली अकबर जैसा जवान हुसैन मैदान में भेजता है। बात अली अकबर पे आई तो फिर देखेंगे हुसैन कितने सबर दिखाता है। वो जानते नहीं थे वो अली का बेटा है, वो हुसैन है। उसने अजान ही अली अकबर से दिलवाई, सबसे पहले कुर्बानी ही अली अकबर की पेश करवाई। वो मां प्यो थी बर्बाद वेंदा है जिदा मर पवे पुत्र जवान, जिदी मौत ते खर्च होवे उदी शादी दा सामान, शाह छिकन लगा फल बरछीदा होई कुल मुरसल हैरान। खड़ा मलकल मौत हुसैन नु आखे ओ तेरे अकबरदार।

खड़ा मलकल मौत हुसैन नुआखे हो तेरे अकबरदार मान, हो तेरे अकबरदार मान।

जानता हूं मैं सारी रात पढ़ता रहूं, आप सारी रात सुनते रहेंगे। खुदा ताला आपके इस इश्क में बरकती सलामती अता करे आपको। सर झुकाकर मेरा आपसे एक सवाल और कुछ साढ़े लाइक। 10 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, 2:45 हुआ चाहते हैं, कमोबेश 5 घंटे। नौकरी कबूल हुई या नहीं, हुक्म कीजिए, बस आपसे इजाजत लेने का टाइम है अब।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

कर दिया कुछ इश्क़ था कुछ मजबूर।

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.